नहीं उचित नहीं, जो कहे ते आप ते जाई अंतर परे निस्संदेह। अब यहां रस के उपासक को, रसोपासक को, साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि सभी से ये चर्चा करनी उचित नहीं है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि जिन यह रस समझो नहीं, तासो रस की बात करनी उचित नहीं, जो कहे तो आपते जाए। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके हृदय में जो रसानुभूति है वही समाप्त हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अंतर परे निस्संदेह, और समाप्त नहीं होगी तो कह रहे शिथिल तो अवश्य पड़ जाएगी। पूर्व भी आपसे चर्चा हुई इस विषय पर, भजन को छिपाना ही भजन को बचाना है, भजन का गोपन, और अनधिकारी के सामने तो बिल्कुल भी ना कहा जाए। अच्छा, बहुत लोग मैंने ऐसे देखा वो खींच तान कर सबको लगाने का यहां प्रयास करते हैं, पर ऐसा संभव होता नहीं है भाई। जीव का कल्याण केवल केवल केवल ईश्वर के अनुग्रह से होता है। आप और मैं यहां बैठे हैं, ये आपका मेरा प्रयास नहीं है, ये आप पर और मुझ पर प्रभु की कृपा है। ये प्रभु की कृपा के प्रसाद से आप और मैं यहां पर बैठे। ताते मौन होए रहनो बहुत भलो है। सब जगह प्रवचन उपदेश की आवश्यकता नहीं है, है ना। ध्रुवदास जी कह रहे आवश्यकता से भी कम बोलने वाला वस्तुतः साधक है। डोंगरे जी महाराज तो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है, आवश्यकता पड़ने पर भी आवश्यकता से कम, कहते हैं जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है वो सदा मौन रहता है। समझिए, वो सदा मौन में ही है, वो वाणी का तप कर रहा है। ये वाणी का तप है, आपको खबर भी नहीं है आप अपनी कितनी शक्ति अनर्गल बोल कर गमाते हैं। तो फिर कहते हैं विजाति सुमिल वो भलो नाही। विजाति माने जो आपके रस के अनुकूल ना हो। अच्छा, एक और बात यहां मैं छोटी सी है पर कहना चाहूंगा, ये अच्छा है या बुरा, इस वाद और विवाद में भी मत पड़िए। किसी किसी के लिए ये घोषणा भी मत करिए कि अच्छा है या बुरा, हमारे अनुकूल नहीं है, बस इतना पर्याप्त है। अच्छे और बुरे के प्रपंच में पड़ना भी ठीक नहीं है। जो आपके लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा होगा, होगा निश्चित रूप से होगा भाई। ऐसा ही रचा है रचने वाले ने संसार, जो आपके लिए बुरा है ना वो किसी के लिए अच्छा होगा, जो आपके लिए अच्छा है वो किसी के लिए अरुचिकर होगा। तो मैं कहता हूं अच्छे और बुरे के इस वाद में भी मत पड़िए। दूरम उपाय है, जो आपके अनुकूल ना हो बस मौन होकर वहां से दूर हो जाइए। वो आपके लिए नहीं है, बस वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। और अनुपयोगी की निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मौन रहकर उससे दूरी बना लेना ये बुद्धिमानी है। मौन हो जाइए, अपना रास्ता बदल लीजिए। बिन सजाती सुमिल बात ना चलावे। जब तक कोई अपने भाव के अनुकूल हृदय ना मिले तब तक चर्चा ना की जाए, इस रस की तो कदापि ना की जाए। जो सेवक जी महाराज कहते रसिकन सो प्रीतम कहे, रसिक हृदय के सन्मुख अपने हृदय की बात कहनी चाहिए। अनेक भांति भजन भक्ति के भेद तैसे ही भक्त हैं, जैसो जाको भाव है तैसी सिद्धि होए, ताते औरन सो प्रयोजन नाही। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं भाई, जैसे जिसकी भावना है। कबीर सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। राम झरोखे बैठ के

अरे करेगा सो भरेगा, तू क्यों होत उदास। कहते तहां बखानो है तोए बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। अभी तो अपना ही कार्य नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस कहते थे पहले आत्म कल्याण कर ले, पहले अपना कल्याण कर ले, तत्पश्चात ईश्वर की आज्ञा हो तो धर्म का उपदेश करें, उसको माया से लिप्त होने का भय नहीं होगा, नहीं तो निश्चित रूप से स्खलन होगा। हो ही जाता है भाई, यही भगवान की माया का प्राबल्य है। आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, माया का प्राबल्य क्या है कि वो अनुचित को अनुचित लगने ही नहीं देती। यही तो माया है, जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सुनाई। आपको लगेगा कि उचित है वो अनुचित होगा, पर आप उचित समझकर बस करते चले जाएंगे। यही भगवान की माया है, वो हित और अहित का, उचित और अनुचित का, सत और असत का जो भेद है वो आपकी दृष्टि के सामने प्रकट ही नहीं होने देती। और माया क्या है, यही तो है। संसार अपना लगता है, प्रभु दूसरे लगते, यही तो माया है और क्या है। बार बार साधु आपसे कहता है, संत आपसे कहता है, गुरुजन आपसे कहते हैं, कहां समझ में आती। यही भगवान की माया है। पाए रतन चीनो नहीं दीनों करते डार, ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। तो कहते हैं आपको यो चाहिए औरन सो मत्सरता छाण अपनो रस लिए रहे, और याही रस के उपासकन सो अंतर खोल संग करे। और यहां मैं फिर कहूंगा, भगवान ने नवदा भक्ति के उपदेश में बल देकर ये बात कही है कि सुपने हूं नहीं देखाऊं पर दोषा। एक और बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं आपसे, साधक को जितनी हानि परदोष दर्शन से होती है उतनी और किसी भी वृत्ति से नहीं होती। परदोष दर्शन ही है जो साधक के मन चित्त को कलुषित कर देता है, भजन के अनुकूल नहीं रहने देता। इससे बचने का तो भाई भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रयास क्या, ऐसा तो करना ही है। यही बात अपने और अंतर में रखिए, ऐसा तो करना ही है। ये और भजन साथ साथ नहीं रह सकते, आप में दोष दृष्टि ना हो। सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। श्री व्यास जी के वचन, व्यास विवेकी भगत सो दृढ़ कर की जय प्रीत, अविवेकी को संग तज यह भक्त की रीत। व्यास जी कह रहे बिना कुछ निंदा स्तुति के प्रपंच में पड़े, जो अनुकूल ना हो दूर हो जाइए, जो अनुकूल हो उसका संग करिए, यही विवेक है। तो विवेकी कहा, अब विवेक बताते हैं क्या है। विवेक की तासो कही है, जो भली गहे बुरी छाड़े। अविवेकी बोले भली बरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाड़े। अब आज तो संसार में ही रमे हैं हम, जैसे किसी का प्रवचन सुन लिया, अगले दिन वृंदावन आ गए, बोले अब वृंदावन में ही रहेंगे। और इत व्यवहार ना उत परमारथ, और बीच ही बीच जन्म गमायो। इसीलिए मैं कई बार आपसे निवेदन कर देता हूं, भाई जहां हो वहीं से मार्ग बनाना आरंभ करो, अपने हृदय को पात्र बनाना आरंभ करो। विश्वास रखो जिस दिन आप पात्र हो जाओगे, प्रकृति एक क्षण भी आपको वस्तु से वंचित नहीं रखेगी, क्योंकि ये द्वार तो कभी बंद हुआ ही नहीं, खुला ही है। जीव विमुख है, ठाकुर जी तो सदा सन्मुख है, जीव विमुख है। अपने आप को पात्र बनाना आरंभ करिए। और जो कुछ देर पूर्व आज चर्चा हुई, जीवन इसीलिए रचा है रचनाकार ने, इस संसार इसीलिए रचा है। सीखिए समझिए, चोट भी लगती है तो वो आपको सुंदर बनाने के लिए, सुघड़ बनाने के लिए लगती है। बिना पिटे कोई पहलवान भी नहीं बनता है, चोट भी खानी पड़ती है, वो भी आवश्यक है। बस इसी प्रकार आगे बढ़िए। तो कह रहे अविवेकी भली बुरी कछु ना समझे, सब गहे सब छाड़े। इसी को मैं कुछ देर पहले संतुलन कह रहा था, जैसे ही अनुपात बिगड़ेगा वैसे ही स्वाद बिगड़ेगा। आप दाल रोटी भी बनाते हो, दाल में भी नमक का अनुपात बिगड़ जाए स्वाद बिगड़ जाएगा कि नहीं। ऐसे ही जीवन है, इसमें प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है। अनुपात में रहेगी वस्तु तो आपको जीवन का स्वाद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, नहीं तो स्वाद बिगड़ जाएगा। अच्छा एक और बात, व्यर्थ यहां पर कुछ भी नहीं है, निरर्थक यहां पर कुछ नहीं है भाई, सबकी उपयोगिता है। इसीलिए मैंने कहा कब लेना है, क्या लेना है और कितना लेना है, ये सीख लीजिए। आपको कब लेना है, क्या आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। सब अच्छी वस्तुएं भी आपके लिए नहीं होंगी भाई,
एक वस्तु किसी के लिए गुणकारी होती है, वही वस्तु किसी के शरीर को हानि पहुंचा देती है। अपनी अपनी प्रकृति है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको कितना लेना है। यहां पर आकर व्यक्ति अपने अंतर मन को दूषित कर बैठता है। वो आवश्यकता से अधिक चाहता है, और आवश्यकता से अधिक तो भाई जल भी पी लो तो वो आपको रोगी कर देगा। एक तरफ कहते हैं जल ही जीवन है, पर आवश्यकता से अधिक तो जल भी पी लिया जाए तो आपको रोगी बना देगा, शरीर को हानि पहुंचाएगा। जीवन की आवश्यकता निर्धारित करनी चाहिए शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा में रहकर। फिर कहते हैं ताते सजाती सो मिल बात जुगल विहार की करे, बिचारे तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे, बिजाती को परस सुना करे। जो अपने भाव के अनुकूल हैं, जो अपने भाव के साधक हैं, और जो आपके भाव के ही सिद्ध जन हैं, शुद्ध जन हैं, रूपदास जी कहने उनका संग करे, उनके संग बैठकर प्रियालाल की चर्चा करे, वार्ता करे, चिंतन करे, तिनकी जूठन खाए चरणोदक पीवे, बिजाती को परस सुना करे। और जो अपने भाव से साम्य नहीं रखता, जिसके हृदय में आपके जैसा भाव नहीं है, बोले उसका तो संग त्याज्य ही है, भरसक प्रयास करना चाहिए ऐसे संग से दूर रहने का। और वृंदावन चंद एक प्रीति ही माने, कोटि भांति भावे अपरस रहो, भावे सपरस रहो, अनेक आचार करो, पर उनको एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। हमारे प्रिया लाल को न तो किसी व्रत उपवास से कोई लेना देना है, न अपरस सपरस से, वो तो एक प्रीति माने। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कुछ भी करो, विविध भांति व्यंजन करो, पर लौन बिना सब फीक। प्रेम ही इष्ट है भाई, प्रेम ही आराध्य है, प्रेम ही प्राप्य तत्व है। अब जब ध्रुवदास जी ने यह कहा कि भाई चाहे अनेक आचार कर लो, तब एक ने कही कि आचार ना करें, अरे नहाने धोने की आवश्यकता ही नहीं है क्या। तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं थोड़ो बहुत करें, सदाचार के लिए करें। देखो आपके मन में आग्रह ना हो जाए किसी भी बात को लेकर। एक संत थे, विरक्त थे, अब उनका नियम था कि वो पत्तल में ही पाते हैं भोजन। एक बार किसी के यहाँ जाना हुआ, उनका रात्रि के भोजन के लिए उन्होंने बुलाया था, गांव में वो लोग रहते थे। अब उनके मन में भाव कुछ और था, संत भगवान पधारे हैं, तो जो उत्तम से उत्तम व्यवस्था थी वो उन्होंने उनके लिए की। चांदी के बर्तनों में उन्होंने भोजन परोसा। अब वो संत जी कहने लगे, बोले हम तो भाई पत्तल में ही पाते हैं। अब पत्तल कहाँ से आए, पत्तल उस समय उपलब्ध नहीं हो रही। वो जो महात्मा है वो अपना आग्रह छोड़ नहीं रहे। तो ऐसा आग्रह मन में ना हो, किसी भी स्थिति को लेकर आग्रह मन में ना हो। महर्षि एक बार श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने श्री अखंडानंद जी महाराज से पूछा, चर्चा हो रही थी कि एक दुशाला रखा है, एक फटा कंबल, एक विरक्त को क्या ग्रहण करना चाहिए। श्री अखंडानंद जी महाराज ने तत्काल उत्तर दे दिया, बोले निश्चित रूप से फटा कंबल उठाना चाहिए। उड़िया बाबा हंस दिए, बोले नहीं, बोले जिसके लिए फटा कंबल और दुशाला एक से है ना, वो विरक्त है, उसके हिस्से जो आ जाए वो विरक्त है। कहने वाला बड़ी सुंदर बात कहता है, बोले कि मर्जी हुई गर यार की तो घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई गर यार की घर छोड़कर बैठे, जिधर मोड़ दिया मुख वहीं मोड़ कर बैठे, गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बोले ये वो विरक्त है, इसके मन में आग्रह ना हो। आग्रह हृदय को कठोर करता है भाई, आग्रह से हृदय में ग्रंथि पड़ जाती है। प्रभु की इच्छा से, प्रभु के विधान से जो मिले। रांका बांका जी की कथा बड़ी प्रेरक है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। कहते हैं कि भक्ति उनकी ऐसी अद्भुत, और उनकी जो आर्थिक स्थिति थी बड़ी दयनीय है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं। नामदेव जी तो इतने खींच गए और पंडरीनाथ से जाकर कहने लगे आपके भक्त हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, बोले आपको जरा भी लज्जा संकोच नहीं है, आपके भक्तों के पास दो समय का भोजन नहीं है। ठाकुर जी कहने लगे, बोले हम देना चाहते हैं लेते ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप देना चाहें ये ले नहीं, चलिए हमारे साथ दीजिए। प्रभु गए, नामदेव जी वृक्ष की ओट में खड़े थे, बोले देखना। ठाकुर जी ने कहा, बोले हम आपसे विनती करते हैं। राका माका कहने लगे, अब तो सच में ही कलयुग आ गया। बोले क्यों,
बोले मायापति भी अपने भक्तों को माया ही देने का प्रयास कर रहे हैं, माया में ही उलझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले प्रभु यदि आप हमें ये देना चाहते हैं तो हमारी आपसे विनती है आप पुनः यहाँ आने का कष्ट ना करें। हम नामदेव जी को तब विश्वास हुआ कि जाही न चाही कबहु कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। टाका बाका कहने लगे प्रभु आप हमें दरिद्र समझते हैं जो देने के लिए आए, हमारे हृदय में ये जो आपका प्रेम उच्छलित है हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जानते हैं सर्वोपरि समझते हैं। तब नामदेव जी ने देखा, वही राका बांका एक दिन जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, राका आगे आगे चल रहे थे, उनकी पत्नी बांका वो पीछे पीछे चल रही थी। आगे देखा मोहरों की एक थैली रखी है, राका फटाफट से उस पर मिट्टी डालने लगे, बांका पीछे से आई, उन्होंने देख लिया कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या करते हैं आप? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। मुस्कुराते हुए कहा बताइए क्या कर रहे थे आप? बोले यहां ये स्वर्ण रखा था और मुझे लगा कि इसको देखकर तुम्हारे मन में कहीं कोई अन्यथा भाव न आ जाए तो मैं इस पर इससे पहले कुछ बोलते। बोले इसीलिए मिट्टी पर मिट्टी डालने का प्रयास कर रहे थे। अरे पराया धन है हमारे लिए तो वैसे भी मिट्टी है। तब राका ने कहा आप सच में बांका है, आपका भक्ति का भाव सच में बांका है, निराला है। मेरे लिए तो अभी स्वर्ण और मिट्टी में भेद है पर आपके लिए तो स्वर्ण और मिट्टी में भेद भी नहीं रहा। तो ध्यान रखना भाई, कभी कभी आचार के नाम पर हमारे हृदय में आग्रह हो जाता है और कभी कभी तो हम किसी का हृदय और दुखा बैठते हैं अपने आग्रह और दुराग्रह के कारण। ऐसा ना हो, ध्यान रखना अंतिम भावना जो प्रभु तक पहुंचेगी वो प्रेम ही है, वो आपके हृदय की विशुद्ध प्रीति ही है। अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगाया होगा, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, पर याद किसको रखा जाता है? झूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई और दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। स्मरण तो इन्हीं का किया जाता है। जब श्री जी की सेवा पाक करे तहां आचार करे, बोले जब श्री जी के लिए रसोई करे तो शुद्धता का ध्यान रखे, और फिर भी कह रहे हैं जैसो संभव है, जहां तक संभव हो सके। अब बहुत सारी माताएं कई बार लिखकर प्रश्न पूछती हैं कि भाई घर में हमारी रसोई में तो सब प्रकार की वस्तु बनती है, हम किस प्रकार ठाकुर जी की सेवा करें? आपके ठाकुर जी आपके हैं, आप आपके ठाकुर जी हैं, उनके बीच में न कोई आता है और न किसी को आने की कोई आवश्यकता है और ना ही आप अनावश्यक रूप से किसी को लाइए, जो आपसे संभव हो। बस प्रेम की कमी ना होने पाए, भाव की कमी ना होने पाए। प्रसाद ही कोटि, फिर कहते हैं अपने प्रसाद पाएवे को बहुत आचार न करें। प्रसाद ही कोटि आचार को स्वरूप है, भोग लागे पाछे बहुत आचार उचित नाही। शास्त्र हूं मैं कही है अति आचार अनाचार समान है, रांधे अन्न विषय कछु ना माने। जो भोग श्रीजू को लागो तो सब बराबर, कहा काचो कहा पाको। वैष्णव सदाचार के लिए आचार करें, मन में विश्वास ना धरे कि यही ते कारज सिद्ध होएगो। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आचार भी करे कब? जब प्रभु को वस्तु निवेदन करनी हो। जब श्री ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद जब स्वयं प्रसाद पाए तो बोले बहुत अधिक आचार विचार का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रसाद ही कोटि कोटि आचार का स्वरूप है। कोटि कोटि एकादशी महा प्रसाद को अनेक अनेक आचार के पालन करने का जो फल है, हो धन धन श्री।

0: वृंदावन।
1: कह रहे रांधे अन्न विषय कछु ना माने, ठाकुर जी को भोग लगा उसके बाद बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें वस्तु बुद्धि भी ना करिए, कच्चा पक्का भी देखना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग तो मैं देखता हूँ जाड़े के दिन होते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाया फिर वही प्रसाद कुछ देर के बाद पाते हैं तो उसे फिर पुनः चढ़ा देते हैं चूल्हे पर, ऐसा करना अनुचित है। प्रसाद के साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, प्रसाद को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ठंडा गर्म नहीं है, प्रसाद कच्चा पक्का नहीं है, प्रसाद ऐसा वैसा नहीं है, प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद का जो परिणाम है ना, सब सुख एक सीत के स्वाद, वो तो प्रसाद को प्रसाद रूप में पाने पर ही है। आप प्रसाद को वस्तु समझ कर पाओ तो उसका वो फल नहीं है, उसका वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद का भी तो एक प्रसाद होता है ना, प्रसाद का प्रसाद है प्रभु के चरणों का अनुराग और दृढ़ होता चला जाए। अरे भक्त तो भगवान के प्रसाद के बल पर माया को विजय करने की बात करते हैं। उद्धव जी श्री ठाकुर जी से कहते हैं एक आदर्श स्कंद में, ठाकुर जी ने कहा तुमको भी हमारी माया से डर लगता है? उद्धव जी ने कहा हम आपका प्रसाद पाते हैं, आपकी माया हमारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकती। ये प्रसाद की महिमा है, पर प्रसाद को प्रसाद जानकर पाया जाए। फिर कह रहे वैष्णव तो सदाचार के लिए आचार करे। हाँ, जब आप ये देखें कि आपका अनुसरण कोई और कर रहा है तो जहां तक संभव हो सके, और वैसे भी मुझे लगता है भाई शुद्धता स्वच्छता पवित्रता ये तो एक साधक के जीवन में होना ही चाहिए, पर ये मन में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि यदि हम बहुत शुद्ध और स्वच्छ रहेंगे और कोई कम रहेगा तो हमारा कार्य पहले सिद्ध होगा, उसका नहीं। हो सकता है उसके हृदय की प्रीति हमसे अधिक गाढ़ी हो। अब कर्मा बाई तो जूठे दातुन से ही भोग हिलाकर जगन्नाथ जी को पवा देती है, शबरी चक चक कर फल देती है, लक्ष्मण जी नहीं खाते रघुनाथ जी प्रेम से आरोगते, श्री जी की टहल कोटि कोटि आचार को स्वरूप है। यहां ध्रुवदास जी कह रहे भाई सब साधनों की सिद्धि क्या है, भोर भये ते सांझ धरे तक सेवा को ही नेम हमारा। प्रिया जी की जो टहल है जो सेवा है ये सब पुण्यों का फल है, सब साधनों की सिद्धि है, और मुझे लगता है यही परम प्रसाद है। श्री जी की सेवा प्रसाद है। बहुत आचार ते हियो अति कठोर होए जाई, मैं आपसे कह रहा था बहुत आग्रह से हृदय कठोर हो जाता है, ऐसा ही करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा भी नहीं लगता, ठाकुर जी को ऐसा हृदय अच्छा नहीं लगता जो पहले से ही सोच कर आए ऐसा करेंगे वैसा नहीं करेंगे। ठाकुर जी को कैसा हृदय अच्छा लगता है? बोले जैसा तुम चाहोगे वैसा करेंगे। तभी हमारी भोली सखी गाती है

ना हमें ऐसा होना है ना हमें वैसा होना है, जैसा आप चाहेंगे वैसा होना है, जैसा आप चाहें। जय विधि तोहे अति प्यारी लागो, इसे कहते हैं मन और बुद्धि का समर्पण। ये भजन अति कोमल है और कोमल कठोर एक संग न बने। इसीलिए मैंने आपको कहा था भाई प्रयास करो आपके मुख से कठोर वचन ना निकले, रूखी बात मत कहिए किसी से। रूखी बात का परिणाम प्रतिक्रिया प्रकृति क्या देगी, एक बात तो निश्चित है, सर्वविदित सिद्धांत है, आप जो देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। आप कठोरता का प्रसार करेंगे, कठोरता आपके पास लौट कर आएगी, हृदय कठोर हो जाएगा, ठाकुर जी के भजन के योग्य नहीं रहेगा। तभी संत बल देकर कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का।

0: शकल हूँ।
1: और मुझे लगता है मीठा बोल ये तो ऐसा दान है जो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सम्मान के दो शब्द तो प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। हमारे महाप्रभु जी का गुण है, हमारे महाप्रभु जी का ये गुण है, सबको मान देते, सभी मान प्रद आप अमानी। यही महापुरुषों का गौरव होता है भाई, सभी मान प्रद आप अमानी। अब साधारण मनुष्य जीवन भर इसी खींचातानी में मर जाता है, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्रेम नहीं मिला, हमें सम्मान नहीं मिला। मैं कहता हूं प्रेम बांटिए, प्रकृति का कण कण आप पर प्रेम की वर्षा करेगा। आप जहां जाएंगे आपको प्रेम ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। प्रेम दीजिए, बांटिए, सम्मान दीजिए, प्रकृति आपको सम्मानित करेगी। और मैं एक और बात आपको निवेदन करूं, जिसको समय सम्मान देता है, वस्तुतः सम्मानित वही है समय जिसका सम्मान करता है। और समय किसका सम्मान करता है? जो समय का सम्मान करता है। समय का सम्मान क्या है? सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। समय का सम्मान क्या है? जीवन का आदर करना, यही समय का सम्मान करना है। और जीवन का आदर क्या है? कि जीवन का सदुपयोग करिए। जीवन का सदुपयोग क्या है? प्रसन्नता का प्रसार करिए, जिसके लिए प्रभु ने आपको मनुष्य बनाकर इस सृष्टि में भेजा है, इसीलिए आए हैं आप यहां पर। अपने जीवन के अर्थ को, मूल्य को पहचानिए। जो स्नेही भजनीक हैं तिनके घटबड़ क्रिया में मन न दे, आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। अच्छा एक और बात यहां मैं आपको कहूं, साधु संत जैसे भी भजन करें, बस उनकी जय हो, जय हो, जय हो। ध्रुवराज जी कह रहे उनकी घटबड़ क्रिया में मन न दे, पता नहीं उनके हृदय की, उनके भाव की पहुंच कहां तक है। अभी एक दो दिन पहले मैंने आपको सुनाया, गंगा किनारे लेटे वो साधु, एक युवान साधु कहता है, अरे 10 बज गई अब तक सो रहे हो? अब खबर नहीं वो सो रहा है कि भाव समाधि में है। अब क्या जरूरी है कि ऐसे ही बैठकर ही भजन किया जाए? और मैं तो कहता हूं किसी की भी, साधु की क्या, मैं कहता हूं किसी की भी घटबड़ क्रिया में मन देना ही क्यों है? कौन भला करता है, बुरा करते है? मैं कहता हूं इसका विचार आपको मुझे करना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है? न कहिए न सुनिए। और संत हो फिर तो नानक कहते हैं, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। संत हो तो फिर तो बहुत सावधान रही, न कहिए न सुनिए। कहीं ऐसे स्थान पर कुछ ऐसा होता हो उठकर चल दीजिए, सम्मिलित मत होइए। मौन रहना भी सम्मिलित होना है, ऐसा मत करिए। देवदास जी कह रहे हैं आपको बड़ी हानि है, बड़ो अपराध है। कह रहे हैं कोटि कोटि आचार उनके एक निमेश के रस भजन पर वार डारी। अब देखने को तो रैदास जूता ही गांठ रहे थे, गोरखनाथ आए, प्रसाद का जल दिया, नहीं पिया, वो जल गया कहां, सिंध, कबीर जी की बेटी ने पिया, बड़े भाव से उसको ग्रहण किया, शिरोधार्य किया। गोरखनाथ जब मुल्तान पहुंचे तो कमाली ने एक क्षण में गोरखनाथ का वो खप्पर भर दिया जो बड़े बड़े सिद्ध नहीं भर पाते थे। तो गोरखनाथ ने पूछा ये कमाल किसका है? मैंने वो पानी जो आप छोड़ आए थे उसी पानी का कमाल है, वो जो आप छोड़ आए थे ये उसी पानी का कमाल है। तो दुर्दास जी यहां यही कह रहे हैं, अरे तिनके एक निमेश के रस भजन पर और सुख कोटि कल्पन के वार डारिए। ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। ब्रह्मा जी को भूल हो गई, ब्रज के ग्वाल वालों को साधारण समझ बैठे, साधारण समझ लिया। तो कह रहे हैं ब्रह्मादिक सनकादिक या बात में भूले हैं और उनकी कौन चलावे। जो यह बात मन में न आवे कह रहे तिन सब अनाचार किए। बोले किसी संत में दोष देखा तो उसके कोटि कोटि आचार बोले धूल में मिलते हैं, वो सब अनाचार है। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। देखो भाई यहां पर केला की कौपीन धारण करने वाले ने भी भगवत प्राप्ति की है, और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे महाराजा अम्बरीश ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष है कि भगवान उनके लिए कहते अहम भक्त पराधीना। यहां उन्होंने भी भगवत प्राप्ति की है। इसलिए भाई जिस रंग में रहो, जिस ढंग में रहो, जिस संग में रहो, बड़ी बात है। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, प्रभु का भजन होता रहे, हरि का स्मरण ना छूटे, प्रभु का स्मरण ना छूटे। जो स्नेही भक्त हैं तिनकी पदरज कोटि आचार है, साधन सिद्ध तीर्थ है। श्री गोसाई कृष्णदास जी को पद साधु चरण रज सब सुख साधन, यह मेरे मत काज सुधी को। और श्री व्यास जी को पद साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाध। कल ही प्रसंग मैंने आपको निवेदन किया था श्री शबरी जी का, कि जो जप से नहीं हुआ, तप से नहीं हुआ, योग सिद्धियों से नहीं हुआ, पुण्यों से नहीं हुआ, ज्ञान ध्यान से नहीं हुआ, विद्या से नहीं हुआ, वो कार्य शबरी के चरण धूल से हुआ। ये इसी के प्रतिष्ठा भगवान ने की कि साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समाध। और श्री गोसाई कृष्णदास जी तो कहते हैं, बोले संतों की जो चरण धूल है ना, यही सब सुख का साधन है। और बोले मेरे जैसे कपटी का सुधार तो बस इन्हीं चरणों की धूल में लोटपोट होने से ही हो सकता है, और कोई साधन हमारे पास में नहीं है।

0: अनंत लीला अवतार अनेक तिनकी ऐश्वर्यता को पारावार नहीं, ऐसे ही नाना प्रकार के भक्त हैं। श्री कृष्ण लीला तीन प्रकार की, तिन्हों में भेद भक्त बहुत हैं। जहाँ जहाँ जाको मन लाग्यो ते सब नीके हैं घट को नाही। देवदास जी कहने भाई ठाकुर जी के अनेक अनेक रूप हैं, अनंत रूप रूप आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसी अनंत अनंत प्रकार के भक्त हैं। और ध्रुवदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कई बार ऐसे रैंडम लोग हमको ये बात बोल देते हैं ना कि तुमको पता है तुम्हारी लाइफ में एक नए नजरिए की जरूरत है। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और शो की शुरुआत हो रही है। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। और सिस्टर, यहीं से मैं शुरू करना चाहूंगा कि जब हम मॉर्निंग की बात करते हैं या एक मॉर्निंग रूटीन्स की बात करते हैं या एक फ्रेश स्टार्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। अक्सर हम ये सुनते हैं ना कि आपकी जो मॉर्निंग है वो डिसाइड करती है आपका पूरा दिन कैसे रहने वाला है। हम वो कहते थे ना, सुबह उठ किसका चेहरा आप देख के उठे थे, तो ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं। तो एक ऐसी आइडियल या एक ऐसी सुबह की शुरुआत क्या होनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान के लिए?
1: देखिए, अगर मैं सबकी ही बात करूं और विशेष जो हम भारत में रहने वाले हैं, जहां आंख खुलते ही सबसे पहले परमात्मा का नाम, परमात्मा का सिमरन या इस तरह की कुछ भी रिचुअल्स की जाती हैं, तो अगर हम आज भी उस चीज को लेकर चलते हैं तो इसमें मैं रूढ़िवादिता नहीं समझूंगी। ये बिल्कुल साइंटिफिक है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसी चीज को अगर हम आज भी रखें कि जब हम आंखें खोलते हैं, जिसमें हमारा सबकॉन्शियस लेवल बहुत एक्टिव होता है, हम कॉन्शियसली भले नींद में होते हैं लेकिन सबकॉन्शियस जो कहते हैं कि बहुत एक्टिव रहता है, तो उस दौरान हम जो थॉट्स करते हैं तो वो थॉट्स हमारे बहुत डीप में जाने की वजह से हमारी डेस्टिनी तक जाते हैं। तो उस दौरान अगर मैं परमात्मा का शुक्राना करती हूँ, उनको याद करती हूँ और जो लक्ष्य मुझे लेना है इस जीवन में, उस लक्ष्य के कुछ चलचित्र या कुछ भी इस तरह का शब्द या कुछ भी अगर मैं उन चीजों को एफर्मेशन के रूप में दोहराती हूँ, तो वो चीज बहुत इम्पैक्टफुल होता है माइंड के लिए और बॉडी के लिए भी, और डेस्टिनी में वो चीज की प्राप्ति होना बहुत सहज हो जाता है।
0: तो एक मॉर्निंग को फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आपके रूटीन में क्या होना चाहिए, इस चीज की टिप यहाँ पर आपको सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया ने दे दी है। ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: मैंने ना अक्सर दो तरह के लोग देखे, एक जो जल्दी उठते हैं और एक जो लेट उठते हैं। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। सिस्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमने अक्सर देखा है कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं, सनराइज से पहले उठ जाते हैं, कुछ लोग बहुत लेट उठते हैं कि मतलब आधा दिन भी उनका को निकल गया हो, बट मैं ये जानना चाहता हूँ इन दोनों लोगों के नेचर में, मूड में या फिर एनर्जी में ऐसे क्या डिफरेंस होते हैं या क्या फर्क होता है?
1: जी बिल्कुल हो रहा है और बहुत, मैं कहूँ इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, जिसका इसका असर है वो बॉडी से, माइंड से लेकर लाइफस्टाइल में जो हम देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा विकृत रूप में आ रहा है। और मैं कहूँ कि अगर हम जैसे भले हम आँख खोलते हैं, कई बच्चे 10 बजे सो रहे हैं तो सुबह 6 बजे उठते हैं, लेकिन कई बच्चे रात को 1 बजे सो रहे हैं और वो दिन में 12 बजे उठ रहे हैं। तो जब वो 12 बजे उठ रहे हैं जिसमें उन्होंने ना सुबह की धूप देखी है, जबकि कई कहते हैं कि इट्स ऑफ नो यूज, हम उठते हैं तो हम अपना डाइट अच्छा लेते हैं, हम जिम चले जाते हैं, जिम इज अ वन थिंग एंड सूर्योदय का जो सनराइज है वो डिफरेंट है। आप जिम में ही हर चीज प्राप्त कर लें ये हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट कि मैं कहूँ पॉसिबल। तो हमें चीजों को अगर बेहतरीन अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने इमोशंस के लिए करना है तो अपने आप को नेचर से जोड़ने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नेचर में बहुत एनर्जी है, बहुत वास्ट, जो हम आज तक पूरा समझ भी नहीं पाए हैं। तो सुबह उठकर अगर मैं नेचर में जाती हूँ, चाहे मेरे पास 4 ही गमले हैं, लेकिन मैं बाहर जाऊं, फ्रेश एयर में जाऊं, बर्ड चिपरिंग सुनो, तो उससे जो मेरे माइंड का जो ऊर्जा है या फ्रेशनेस होगी वो बहुत फर्क आएगा उससे।
0: तो देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव सुबह जल्दी उठने के या लेट उठने के सब आपको यहाँ पर पता चल चुका है। आपको डिसाइड करना है आप कौन सी कैटेगरी में यहाँ पर जाना पसंद करेंगे। 89.6 रेडियो महारानी।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग।

0: कभी आपके मन में ये चीज की क्यूरियोसिटी हुई है, ब्रह्म मुहूर्त जो हम बोलते हैं उसके पीछे का क्या रीजन है? 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और मेरे साथ है सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। सिस्टर, मैं अब आपसे ही जानना चाहता हूँ, अक्सर सुबह 4 बजे या 5 बजे वाले टाइम को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और अक्सर कहा जाता है उस टाइम पे जब हम उठते हैं तो हमारी एनर्जीज जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं बाकी पूरे दिन के मुकाबले। उसी टाइम अगर आप प्रेयर करते हैं या कुछ याद करते हैं तो वो आपके साथ पूरे डे लॉन्ग या लॉन्ग टाइम तक रहता है। इसके पीछे क्या स्पिरिचुअल रीजन है और क्या एक साइंटिफिक रीजन है, मैं दोनों आपसे जानना चाहूंगा।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज के समय में इस क्वेश्चन की बहुत जरूरत है, इसके जवाब की भी, कि ब्रह्म मुहूर्त, नाम भी कितना अच्छा दिया है मुहूर्त, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो मुहूर्त निकाल के करते हैं, है ना, कि मुहूर्त अच्छा है नहीं है, कुछ गलत हो जाए कहते हैं गलत मुहूर्त में हमने काम शुरू किया। अगर हम उस समय को साइंटिफिक रूप में भी अगर देखते हैं तो उस समय सारी निगेटिव एनर्जी सो गई होती है, निगेटिविटी। आप देखिए पेशेंट भी इनफेक्ट पूरी रात जगते हैं लेकिन मॉर्निंग में वो भी रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि चारों तरफ पॉजिटिव एक वाइब्स उनको मिल रही है जो उनकी डिसीज को भी हील कर रही है, उनको रिलैक्स दे देती है। इसी तरीके से आप बाहर भी अगर देखेंगे नेचर में, वहाँ पर भी पक्षियों की आवाज़ हमें सुनाई देती है, हमें वो साउंड सुनाई देती है जिस साउंड से हमारे अंदर एक पीस अंदर तक जाता है। उस समय सारे लोग, कुछ लोग सोए हैं लेकिन उनकी जो इनर, जिसको कहा सबकॉन्शियस माइंड, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है अगर हम उठते हैं तो। और चारों तरफ, पहले तो हम भारतवर्ष में रहते हैं तो हम देखते थे कि शुरू में जब हम उठते थे पहले तो कहीं मंदिरों में घंटियों की आवाज़ें हैं, तो कहीं अजान है, तो कहीं पर गुरुवाणी हो रही है, वो एक जो माहौल है वो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है जो हमारी आत्मा को, हमारे अंदर तक वो फील होता है और उसी एनर्जी में अगर हम उठते हैं तो पूरे दिन वो एनर्जी वर्क करती है। उस टाइम पे हमने जैसा थॉट लिया है पूरे दिन उस थॉट का इम्पैक्ट रहता है।
0: तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको बखूबी यहाँ पर पता चल गया होगा, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: एग्जीबिशन ने इंग्लैंड के मैच की टिकटें भेजी हैं।
1: सिनेमा का कैप्सूल। अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहां शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यह भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

0: दिन में ऐसा कौन सा टाइम है जब आप मेडिटेशन करें तो आप यूनिवर्स से इजिली कनेक्ट हो सकते हैं? 89.6 रेडियो महारानी, तुषार हैं यहाँ पर आपके साथ, और इस वक्त मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। सिस्टर, हमने अक्सर ये सुना है ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एनर्जीज जो होती हैं वो बहुत हाई होती है, तो हम जो एक सुप्रीम एनर्जी है या जो यूनिवर्स है उससे जल्दी कनेक्ट होते हैं, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ये सच है भी कि नहीं है?
1: बिल्कुल करता है, क्योंकि सुबह का साईं इस तरह के शब्द हमारे शास्त्र बताते हैं, सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हर चीज में अगर आप देखें चाहे वो ईस्ट है या वेस्ट है सुबह की बात की जाती है। भारत के शास्त्रों में भी सुबह प्रातः ये शब्द बहुत ऐसा माना जाता है कि एनर्जी अगर आपको लेनी है चाहे वो विशेष मेंटल लेवल पे, फिजिकल तो आएगी ही आएगी लेकिन मेंटल लेवल पे अगर अपने आप को एनर्जाइज करना है तो आपको जल्दी उठना है। और जल्दी में भी मैं कहूँ कई लोग 6 बजे सोचते हैं, लेकिन अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त जैसे आपने बात की वो उठ रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा ग्रास्पिंग एनर्जी माइंड की रहती है। ब्लॉटिंग पेपर अगर माइंड काम करता है एज अ ब्लॉटिंग पेपर वो सुबह करता है।
2: सुबह जैसा हम थॉट लेते हैं पूरा दिन हमारा वैसा ही जाता है। अगर हम सुबह सिर्फ ये भी कह दें कि मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे पूरा दिन खुश रहना है, तो वो खुशी की जितनी भी एनर्जी है वो हमारे पास आएगी और उसी तरीके से कार्य करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम लोग इसको प्रैक्टिकल करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपने आप को अफर्मेशन देना और पूरा दिन हम उस चीज को फिर फील करते हैं और रात में फिर हम उसको चेक भी करते हैं है। क्योंकि सुबह का सारा श्रेय जो है वो हमारे रात के सोने पर भी जाता है। अगर हम रात को रिलैक्स होकर के सो रहे हैं, सारे अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ करके और बिल्कुल रिलैक्स होकर के सोते हैं, तभी हम सुबह भी जल्दी उठ पाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं और हम रिलैक्स होते हैं।
0: सिस्टर, जिस तरह से आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है मुझे लग रहा है कि मेरे जो डाउट है वो तो यहाँ पर क्लियर हो ही गए हैं, बट जितने लिसनर्स हैं उनके डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और हमारे मॉर्निंग रूटीन पे ऐसे हमें मोटिवेट करने के लिए या उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन कल सुबह 6 बजे हम आपको फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर बीके ज्योति और बीके प्रिया भी हमको फिर से ज्वाइन करेंगे। रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: पट्टी खुजा के बीती रात, रास्ता ना दिखे कोई आज, पत्ती जला रात भगा, पासा पलट दे बोर्ड उलट दे, अरे उठ बाजी ले अपने हाथ,
1: टाइम जा रहा है भाई
2: तो करे रीस्टार्ट
1: रीस्टार्ट।

गुड मॉर्निंग फरीदाबाद भाई, मंडे वाली सुबह को हमने कर लिया है खुशी खुशी पास और अब लेकर आ गई हूँ ट्यूसडे वाली सुबह, यानी कि एक दिन तो चलो इस वीक का निकल गया है और अब कुछ ही दिन बाकी हैं, फिर से वीकेंड आ जाएगा। देखिए भाई, वीकेंड की तो ऐसी एक्साइटमेंट है ना कि जाता नहीं है, उससे पहले हम उसे याद कर लेते हैं। देखिए आ जाएगा, लेकिन आज ट्यूसडे को रिकवर करना है, हमको मौका मिला है बहुत सारी चीजें करने का, वीकेंड अभी दूर है, लेकिन ट्यूसडे की मॉर्निंग को चलिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी अपडेट्स के साथ, और कुछ खास है आज मेरे पास।

0: घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। टीवी खुद चलना बंद, फ्रिज से आइसक्रीम गायब, मतलब भाई भूत भी फुल सेवेज मूड में है। पर छोटा बंकू भूत से दोस्ती कर लेता है। भूतनाथ अंकल भी सोच रहे होंगे, अरे यार ये डर क्यों नहीं रहा?
1: कान्हा भूत हूँ।
2: कान्हा भूत नहीं होते? अच्छा तो तुम यहाँ पर रहने आए हो?
0: धीरे धीरे पता लगता है कि नाथ साहब ही इस घर के असली मालिक हैं और यहीं अटक गए हैं। EMI का लोन चुकाना पड़ा होता तो पहले ही स्वर्ग सिधार जाते। अब बंकू की मिशन मोड एंट्री होती है, भूत को फ्री करना है। एक तरफ स्कूल का होमवर्क और दूसरी तरफ भूत की मोक्ष यात्रा। बचपन काफी स्ट्रेस में चल रहा था, आखिरकार नाथ अंकल स्वर्ग एक्सप्रेस पकड़ के निकल लेते हैं और घर अब हॉन्टेड नहीं रहा। लेकिन शर्मा जी की टेंशन खत्म नहीं हुई, अब उनको नया टेनेंट ढूंढना है। घर सस्ता मिले तो एक बार चेक कर लो, कहीं घर के साथ भूत मुफ्त ना मिल रहा हो, क्योंकि हर भूत भूतात नहीं होता।

0: पीछे।
1: Hi guys, this is Aditya. Hope you like the song चांद बालियां। Comment below and share your thoughts with me।
0: ये तेरी चांद बालियां है होठों पे ये गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होठों पे गालियां।

सी बारिश होती है और हम बारिश से परेशान हो जाते हैं, तो इसी के लिए ना मौसम भी अपने रंग बदल लेता है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी। तो भाई देखिए, अगर मैं बात करूँ ना आज वेदर की, तो आज बारिश को तो फाइनली छुट्टी मिल गई है और धूप को ड्यूटी मिल गई है। तो भाई देखिए, आज अगर मैं हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करूं, तो आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाने वाला है 34 डिग्री। इसी के साथ अगर बात करूं मिनिमम की, तो 26 डिग्री है। ह्यूमिडिटी आज आपको 66% मिलेगी और विंड स्पीड मिलने वाली है 14। तो अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो अम्ब्रेला जरूर कैरी कीजिएगा, बिकॉज धूप भी बहुत ज्यादा है, और सनस्क्रीन लगा कर जाइएगा, पानी जितना हो सके उतना पी कर जाइएगा, और अपने साथ में एक पानी की बॉटल भी लेकर जाइएगा, बिकॉज हाइड्रेशन का पूरा ख्याल रखना है। सो इन गर्मियों को ऐसे ही जीतना है, और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

everyone. Myself, Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफ स्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो वट एवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू डॉक्टर.

हाँ जी, लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें आती है ना कि जहाँ हमसे कभी कभी गलती हो जाती है और सॉरी भी बोलना चाहते हैं लेकिन सॉरी भूल नहीं पाते। तो भाई देखिए, ऐसे लोगों के लिए आज का दिन लेकर आ गई हूँ। आज तारीख पर तारीख, यानी कि आज कैलेंडर की तारीख लेकर आ गई है पार्डन डे। अगर मैं दिन की बात करूँ तो बड़ा ही खास दिन है, खासकर उन लोगों के लिए जो सॉरी कहना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि यार मुझे माफ कर दो लेकिन कभी भूल नहीं पाते। तो आज क्या करना है, आज आपको पार्डन डे, ये जो दिन है आज आपको मोटिवेट करने वाला है। आज इस दिन का फायदा उठाइए पूरा पूरा, अपने लव्ड वन से, उन सभी लोगों से सॉरी बोल डालिए जिनको आप बरसों से सॉरी बोलने का इंतजार कर रहे थे। और अगर हो सके ना तो अपनी ईगो को थोड़ा साइड कर दीजिए, बिकॉज जहाँ ईगो आता है ना वहाँ पर ना रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ईगो से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये रिश्ते, और यही सिखाते हैं मैं आज का दिन जो है पार्डन डे। तो अगर किसी भी अपने से आज आप कुछ कहना चाहते हैं ना तो फटाफट से चले जाइए। और यार देखिए, सुबह सुबह अगर सॉरी बोलेंगे ना तो पूरा दिन अच्छा जाएगा और हो सकता है वो रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए। तो इस दिन को जाने मत दीजिए और इसी के साथ एंजॉय कीजिए। ट्रैक मिलता है ना थोड़ी ही देर में।

तो इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर भाई साहब, करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं, आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग, नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

दिनों ना थिएटर ने जो हमें रिवॉर्ड दिए है ना यार, बस मन कर रहा है कि हर दिन थिएटर में जाकर बैठ जाओ। फिर चाहे बात करूँ मैं हनुमान अंश की, और अब बात कर लेते हैं मिर्जापुर की। और अगर मैं मिर्जापुर की बात करूँ तो गुड्डू भैया का स्वैग हो या फिर वो कालीन भैया का भौकाल, मिर्जापुर के फैंस ने ना थिएटर में दोनों का स्वैग देख लिया और दोनों को फुल ऑन सपोर्ट किया। भाई देखिए, ओटीटी पर धमाल मचाने के बाद ना मिर्जापुर द मूवी ने बिग स्क्रीन पर भी अपना भौकाल दिखा दिया है। 4 सितंबर को रिलीज हुई थी ये फिल्म। ओपनिंग डे पर 25.75 करोड़ की जो है स्ट्रॉन्ग कमाई के साथ इसने शुरुआत किया, और सेकंड डे पर कलेक्शन बढ़कर करीब हो गया था 32 करोड़। और देखिए अब धीरे धीरे ना दिन बढ़ते जा रहे हैं, नेटवर्थ भी बढ़ती जा रही है, और नेट कलेक्शन पहुंच गया है 57 करोड़ के आसपास। यानी कि इसका मतलब ये है कि फैंस को ये भौकाल बहुत ही पसंद आ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पे देखिए, फिल्म को देखने के लिए ना थिएटर में फैंस का जबरदस्त क्रेज आपको नजर आएगा। भाई देखिए, पंकज त्रिपाठी के साथ अली फैजल और देवेंदु शर्मा, ये सारे जो फेसेस है ना, ये जब स्क्रीन पर आते हैं ना तो बस दिल गार्डन गार्डन हो जाते हैं। और यही दिखाया गया इस मिर्जापुर की मूवी में, मतलब ओटीटी से सीधा थिएटर तक पहुंच गए। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि भौकाल कितने कमाल का होगा। और अब देखना ये है कि ये भौकाल वीकेंड तक 100 करोड़ तक की गाड़ी में पहुंचता है या नहीं। और तब तक के लिए बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर नहीं देखे ना मिर्जापुर तो जाइए भैया, देख कर आइए, और देखने के बाद ना मुझे जरूर बताइएगा कि भाई साहब मूवी कैसी थी। क्योंकि अभी तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, हल्का फुल्का रिव्यू तो दे ही दिया मूवी के बारे में। और इसी के साथ बढ़ती हूँ आगे, मिलती हूँ थोड़ी ही देर में।

हेलो हेलो जी, तो आ गई हूँ आज का बिजनेस बस लेकर। और आज का बिजनेस वाला आइडिया ना खासकर उन लोगों के लिए है जो हमेशा ये बोलते हैं बिजनेस करना है पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। तो भाई देखिए, आज का आइडिया आप लोगों के लिए, आपने करना क्या है, जितने भी लोकल शॉप्स है ना उनके लिए व्हाट्सएप कैटलॉग बनाना और मैनेज करने का काम है। क्योंकि आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे ऐसे नेबरहुड के बुटीक्स, बेकरीज, यहाँ तक कि सैलून है जिनके होम बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन किसी को नजर ही नहीं आते। तो आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन दिखाने के लिए ना कैटलॉग्स बनानी है। तो भाई आपने करना है क्या, उनके प्रोडक्ट्स की फोटो क्लिक करनी है, व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग सेट करना है, साथ ही वीकली ऑफर स्टेटस लगाने हैं और ऑर्डर्स को ऑर्गेनाइज करना है, दैट्स इट। तो भाई देखिए, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, शॉप उनकी डिजिटल दुकान है आपकी यानी कि सर्विस है। और आपने इसकी शुरुआत अपने एक दो लोकल बिजनेसमैन से कर सकते हैं, मंथली सर्विसेज चार्ज की। और देखिए इसके लिए ना आपके पास लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, फोन से भी ये काम हो जाता है। तो आज की बिजनेस टिप याद रखिएगा, जहाँ किसी की प्रॉब्लम है वही किसी और का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो आज ही जाइए अपने एरिया में, देखिए कौन सी दुकान अच्छी चल रही है, बस ऑनलाइन थोड़ी सी वीक है, वहीं से आपका क्लाइंट मिल जाएगा। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलूंगी आपसे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: को खराब करती है, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयाँ ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

हेलो हेलो जी, तो चलिए वक्त हो गया फरीदाबाद से कहीं दूर जाने का। अब आप सोच रहे हैं कि दूर कहाँ जाएं, तो भाई चलिए अबू धाबी चलते हैं। अबू धाबी से एक इंटरनेशनल अपडेट लेकर आ गई हूँ जो कि हमारे ट्रैवल लवर्स को बहुत ज्यादा एक्साइट करने वाली है। अबू धाबी ने ना इंडियन टूरिस्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री UAE एंट्री वीजा की लिमिटेड टाइम प्रोग्राम लॉन्च किया है। लेकिन आपको पता है एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट क्या है? इम्पोर्टेंट ट्विस्ट ये है, ये सभी इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री नहीं है, बल्कि एडिबल ट्रेवल्स को पार्टिसिपेटिंग ट्रेवल पार्टनर्स के थ्रू अबू धाबी हॉलीडे पैकेज बुक करना होगा। तो भाई देखिए, जिसके अंदर आपको ना कम से कम 3 कंसेक्यूटिव नाइट्स की होटल स्टे और इंडिया से रिटर्न फ्लाइट शामिल करनी होगी। यानी कि अच्छा, अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूँ तो ये पायलट प्रोग्राम 1 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा और पता है इनिशियली 20,000 कॉम्प्लीमेंट्री वीजा तक सपोर्ट करेगा। अगर देखिए आप भी अबू धाबी की ट्रिप का प्लान कर रहे थे ना, तो ये ऑफर बिल्कुल आपके लिए ही है। वीजा फ्री जरूर है,

आजकल हम ना सिर्फ शॉर्टकट के पीछे भागता है, सोच के जरूर देखेगा, एक तो 40 मिनट की रोड जर्नी है ना, ये फटाफट से 12 मिनट की हो जाए। नहीं नहीं, मैं गूगल मैप्स की शॉर्टकट की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। यहाँ तो भाई मैं जिसकी बात करने वाली हूँ ना, वो गाड़ी ही हवा में उड़ने वाली है। चलिए फिर उत्तराखंड चलते हैं। और उत्तराखंड के ना अल्मोड़ा के यंग इनोवेटर रवि ने फ्लाइंग व्हीकल बना दिया है, जिसका आर्मी हेलीपैड पर सक्सेसफुल टेस्ट भी किया गया है। और यहाँ पर रवि का क्लेम है कि ये इंडिया का पहला पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल है, जो रोड के ट्रैफिक को बाय बाय बोलकर हवा में ट्रेवल करने का आइडिया लेकर आया। तो भाई देखिए, आइडिया तो बहुत ही मजेदार है, क्या इनोवेशन की है रवि ने उत्तराखंड में बैठे हुए। मतलब कि पहाड़ों पर ही आप ऐसे आइडियाज लेकर आ सकते हो, बिकॉज पहाड़ ना आपको ऊंचा उड़ना सिखाते हैं। और भाई यहाँ पर ना एक बार जरूर सोच के देखिएगा, आज हम बोलते हैं ट्रैफिक बहुत है, लेट हो जाऊंगा, लेकिन कल शायद हम बोलेंगे रोड छोड़ो भाई, ऊपर से ही आते हैं, बिकॉज ये जो रवि की फ्लाइंग कार है ना, ये हमें ट्रैफिक फ्री कर देगी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी टेक्नोलॉजी टेस्टिंग स्टेट में है, लेकिन आइडिया एकदम फ्यूचर वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, ये इनोवेशन किसी बड़े फॉरेनर लैब में नहीं किया गया, बल्कि उत्तराखंड के एक यंग इंडियन इनोवेटर से आ रहा है। तो और क्या ही चाहिए, हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप भी इस फ्लाइंग कार में ट्रेवल करना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ उत्तराखंड साथ में मिलके ट्रेवल करेंगे और फटाफट से बुकिंग करा लेते हैं। और बुकिंग कराने के लिए आपको बताया ना कहाँ जाना है, आपको आना है रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर आपको ये बताना है कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, और फिर देखते हैं कि हम पहाड़ों तक पहुँचते हैं या नहीं। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरी कॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगे। और ऑनेस्टली, ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार ही एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

हेलो हेलो जी। तो चलिए भाई, वक्त हो गया है सोशल स्यापा को। आज का सोशल स्यापा ना वाकई स्यापा लेकर आ गया। अच्छा, आपको क्या लगता था ये जो आंटियां मोहल्ले में चुगली करती है, ये टैलेंटेड नहीं होती, ये सिर्फ अपना टाइम पास करती है? यही गलतफहमी ना आज मैं दूर करने आई हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोलंबिया में एक आंटी ने इसी को बिजनेस बना दिया है। तो देखा, अब हुआ ना अफसोस, जिन आंटियों को ना हम इतना कोसा कर देते हैं कि आंटी आपके पास कोई काम नहीं है। देखिए भाई, उन्होंने अपने इसी काम को ना एक्चुअल में काम बना लिया और अच्छा खासा पैसा जोड़ लिया। तो देखिए, 67 इयर्स ओल्ड मिरियम नाम के इस विमेन ने ना अपने नेबरहुड के सारे सीक्रेट्स गॉसिप कलेक्ट करके ना लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। और उनका कहना है कि इसी काम से उन्होंने अब तक 2 घर खरीद लिए हैं। और वो पता है खुद को ना बहुत ही प्राउड के साथ बताते हैं कि मैं प्रोफेशनल चुगलीखोर हूं, यानी कि मैं ना गॉसिप कर सकती हूं और मुझ जैसे गॉसिप ना शायद ही मोहल्ले में कोई दे सकता है। अब ये आप जरूर सोचेगा कि हमारे यहाँ जिन आंटियों को हम बोलते हैं ना कि आंटी यार अपना काम करो, क्यों किसी की जिंदगी में ताक झाक कर रहे हो। अब आप उन्हें जाके बताइए कि आंटी आपकी इस टैलेंट से ना आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और यार अगर आपको कोई मौका मिले ना तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप भी चुगली करके ना अच्छा खासा पैसा कमाइए। क्यों 9 to 5 करना है आप

हेलो हेलो जी। तो देखिए, वैसे मैं जब मैं आती हूँ ना तो बहुत सारे साइबर स्कैम लेकर आती हूँ, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ डिजिटल अरेस्ट में आए एक नए ट्विस्ट की। तो देखिए, यहाँ पर जो स्कैमर्स है ना, वो अब सिर्फ पुलिस या फिर सीबीआई बनकर कॉल करने के साथ साथ आपको फेक लीगल नोटिस और वीडियो कॉल का इस्तेमाल करके भी फंसा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर कहते हैं कि आपका नंबर किसी क्राइम में यूज हुआ है, और यानी कि सिंपल सा फंडा ये है, ये आपको इस तरह का यकीन दिलाते हैं कि आपके नाम से कोई इलीगल ट्रांजैक्शन मिली है, जिसकी वजह से जो है आपको अरेस्ट करके रखना पड़ेगा और आपके अकाउंट को फ्रीज करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं रीसेंट केस की बात करूँ ना, तो एक रीसेंट केस आया जहाँ पर विक्टिम को ना लीगल एक्शन और बेल के नाम पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए प्रेशर किया गया। फिर क्या था, फिर वो इस स्कैम का शिकार हो गया। तो मैं आज आपको यही बताने आई हूँ कि इंडिया में ना एक चीज बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, और वो ये है कि इंडिया में डिजिटल अरेस्ट नाम के जैसी कोई भी लीगल प्रोसेस होता ही नहीं है। तो अगर कोई भी आपको ऑफिसर बनकर बोलता है कि कैमरा ऑन करो, फोन मत काटो और पैसे ट्रांसफर कर दो, तो भाई फोन बिल्कुल काट दीजिएगा, कैमरा भी ऑन मत कीजिएगा, और हाँ, तुरंत जाकर करा दीजिएगा कंप्लेंट। तो इसी के साथ मैं आपको ये बताने आई थी, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। और इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हाँ जी तो हो जाए। हाँ जी फिर से आ गई हूँ मैं लेकर दिमाग की बत्ती जलाने वाला सेगमेंट, और वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज अर्जेंटली इन द हाउस। तो भाई चलिए आपके दिमाग की ना थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप सभी को पता है जब मैं दिमाग की एक्सरसाइज कराने के लिए आती हूँ तो एक सेगमेंट लेकर आती हूँ, फरीदाबाद की पहेली। तो भाई टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली का, और आज की पहेली है, मैं फरीदाबाद की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह हूँ जिसे 18वीं सदी में बनाया गया था। अभी यहाँ राजा महाराजा रहते थे, और आज भी लोग मेरी खूबसूरती आर्किटेक्चर और इतिहास को देखने दूर दूर से आते हैं। मेरा नाम एक वीर राजा के नाम से जुड़ा हुआ है। तो भाई देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट भी दे दी है, तो इस हिंट को जरूर पहचानिए। और तो फटाफट से मिलते हैं थोड़ी ही देर में, इस पहेली के जवाब का इंतजार खत्म होगा। लेकिन आपको पता है ना आपको क्या करना है, फटाफट से जाना है रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज हमें भेजना है, देखते हैं कि आप फरीदाबाद को कितना जानते हैं। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, पैसो ट्रैक मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अच्छा,
1: और उन्होंने पूछा क्या?
0: क्या पूछा?
1: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
0: क्या बात कर रहे हो?
1: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
0: अच्छा,
1: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
0: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए

0: है, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और इजी एक्सेसिबल है। तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे। दिस इज नॉट राइट। आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी। अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है। तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा। और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ। थैंक यू
1: डॉक्टर calling.

अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहां शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात ये भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

तो चलिए फिर डू यू नो से पहुंच जाते हैं सीधा डिड यू नो पर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिड यू नो पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपको पता है जिस रोड पर हम डेली चलते हैं, जिस रोड को हम डेली देखते हैं, लेकिन हमें इसके पीछे की हिस्ट्री नहीं पता होती। देखा है ना कितना इंटरेस्टिंग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है ना, इसका आइडिया जितना मॉडर्न लगता है, इसका कनेक्शन एशियंट रोम से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, पोम्पे जैसे जितने भी एशियंट रोमन सिटीज है ना, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेड स्टोन ब्लॉक लगाए जाते थे, जिसके थ्रू वहाँ के जो लोग हैं वो रोड क्रॉस कर सकते थे बिना गंदे पानी या फिर कीचड़ में पैर रखे हुए। और देखिए, स्टोन के बीच में इतना गैप रखा जाता था कि जितने भी वहाँ पर कार्ट है, जितने भी हॉर्सेज है, वो आराम से निकल जाए। लेकिन अगर आज की मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात करूँ ना, जो कि बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मॉडर्न वर्जन आया है, ये ब्रिटेन में 1949 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब रोड क्रॉस करने का जुगाड़ काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन थोड़ा सा तरीका मॉडर्न हो गया। तो देखा ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट आया कहां से। और इसी के साथ इसी तरह की डिड यू नो वाले सेगमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी, लेकिन अभी फिलहाल वक्त हो गया मेरा यहाँ से जाने का। मिलेंगे फिर इस म्यूजिक ब्रेक के बाद, तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

आज का एक छोटा सा प्लांट और कल के सांसों के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, यही कहा जाता है प्लांट्स के लिए और यही माना भी जाता है। अगर आज आप एक प्लांट लगाएंगे ना, तो कल आपकी आने वाली जनरेशन को एक बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा। सो देखिए, यही इनिशिएटिव लेकर हम आ गए हैं, यानी कि रेडियो महारानी ने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट ऑक्सीजन। सो ये एक तरह की प्लांटेशन ड्राइव है, जहाँ पर हमारे साथ स्कूल, कॉलेजेस, आसपास के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये ड्राइव पूरे 10 दिन रहने वाली है, यानी कि 10 दिन हम हर जगह को हरा भरा करने वाले हैं। हम अपने पास से प्लांट्स लेकर जाएंगे, स्कूल्स में लगाने वाले हैं, कॉलेजेस में लगाने वाले हैं। और यहाँ सिर्फ हम इस प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा नहीं होंगे, हम ये मौका आपको भी दे रहे हैं, आप भी बन सकते हैं ऑक्सीजन मास्टर। यानी कि अब आप आ सकते हैं रेडियो महारानी के ऑफिस, हम यहाँ पर आपको एक प्लांट देंगे और बस वो प्लांट आपको अपने एरिया में लगाना है। सो ये ड्राइव सिर्फ हमारी नहीं है, ये ड्राइव आप सबकी है। और इस ड्राइव में सिर्फ हम या आप नहीं जुड़ेंगे, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि प्लांट लगाने का सही तरीका क्या है, किस तरह से केयर करनी चाहिए, किस तरह से हमारे प्लांट्स को सर्वाइव करना चाहिए, और साथ ही मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए। सो इन सारी चीजों पे भी बात करेंगे। तो फरीदाबाद रेडी हो प्लांट टुडे ब्रीच टमोरो के लिए, और 10 दिन हमारे साथ जुड़े रहिए और बनिए ऑक्सीजन मास्टर। और इसी के साथ ही ना, एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

हाँ जी, फरीदाबाद वालों, बहुत ज्यादा लेजी हो रहे हो और इस लेजी बन को दूर करने के लिए ना, इस आलस को दूर करने के लिए ना, आज मैं फिटनेस वाला फंडा लेकर आ गई हूँ। और आज का फिटनेस वाला फंडा हमारे फरीदाबाद को बनाने वाला है फिट फरीदाबाद। हाँ जी, फिटनेस वाले फंडे की बात कर रही थी। और अगर आप भी सोच रहे हैं ना कि चलो सुबह हो ही गई है, अपनी फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दिया ही जाए, तो देखिए भाई, फरीदाबाद लेकर आ गया आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका, क्योंकि फरीदाबाद में 27 सितंबर को सूरज कुंड मेला ग्राउंड में होने जा रही है फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026। और आपको पता है खास बात क्या है? अगर अभी तक मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर भी करा लिया खुद को। तो भाई देखिए, जो हमारा फरीदाबाद है वो तो इस रेस में निकल पड़ा है, अब बारी आपकी है। अगर मैं रेस की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको 21.1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर तक का रन मिलेगा। यानी कि मैराथन अब हर किसी के लिए होने वाली है, फिर चाहे आप बिगनर है या फिर है आप एक प्रोफेशनल रनर, हर कोई इस मैराथन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दौड़ना ही नहीं है, अगर दौड़ते दौड़ते आप जीत भी गए ना, तो पता है आपको 21.1 किलोमीटर की ओवरऑल जितने भी विनर्स है ना, उनको मिलेगा 1,00,000 रुपए का प्राइज। तो भाई देखिए, फिटनेस भी होने वाली है, बैलेंस भी बढ़ने वाला है, तो और क्या ही चाहिए। और अगर मैं इस मैराथन की बात करूँ ना, तो ये सिर्फ एक रेस नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैसेज हमें बताता है हेल्दी लाइफस्टाइल और नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प। सो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं कराया खुद को, तो अभी जाइए, खुद को रजिस्टर कराइए। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा फरीदाबाद हाफ मैराथन .in पर। यहाँ पर आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं और इस मैराथन से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो अभी जाइए, रजिस्टर कराइए खुद को और फिर मिलते हैं ना 27 सितंबर को सूरज कुंड मेला ग्राउंड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

और अब सिनेमा का कैप्सूल की एक ऐसी बात जिसको सुनकर बॉलीवुड फैंस कहेंगे ओहो ये कॉम्बिनेशन तो इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं हैवान की। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक तरफ अक्षय कुमार, दूसरी तरफ सैफ, और दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर प्रियदर्शन। मतलब नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। अक्षय और सैफ को साथ देखना अपने आप में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि दोनों ही अपनी अलग अलग स्क्रीन पर्सनैलिटीज है। एक तरफ अक्षय की एनर्जी और दूसरी तरफ सैफ का बिल्कुल अलग एक्टिंग स्टाइल और ऊपर से प्रियदर्शन। तो उम्मीद तो यही है कि फिल्म में कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। फिल्म को लेकर अभी से बज़ बनना शुरू हो गया है और फैंस खास तौर पर इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि इतने सालों बाद ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर कैसा जादू करेगा। तो जब बॉलीवुड में अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन बनते हैं ना, तब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब हैवान कितनी बड़ी धमाल मचाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस फिल्म पर नजर रखनी तो पड़ेगी। बॉस, मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल सिर्फ रेडियो महारानी पर।

0: बातें तो बहुत सारी की हैं और इन्हीं बातों के बीच में मुझे याद आ गया है कि टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो भाई बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं और थैंक यू सो मच, आप फरीदाबाद की पहेली को इतना प्यार दे रहे हैं। डेली आते हैं, डेली अपने जवाब देते हैं, कुछ सही होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो मैंने कभी सुने भी नहीं होते, लेकिन आप फरीदाबाद को बहुत प्यार करते हो, फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते हो, ये सेगमेंट हमें ये बताता है। तो चलिए भाई टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो जो मैंने पहेली पूछी थी ना आज, मैंने एक हिंट भी दिया था, लेकिन पहेली थोड़ी सी टफ थी। तो चलिए देखते हैं किसने सही जवाब दिया है। तो मैं पहले इनका जवाब आपको सुनाती हूँ।
1: हाय अंजलि, मैं हूँ दीक्षा फरीदाबाद से, और आपकी आज की पहेली का सही जवाब है राजा नार सिंह बल्लभगढ़।
0: बिल्कुल सही पकड़े हैं दीक्षा, इतना सही जवाब, और ये हमें ये बता दे कि आप फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानते हो। बिकॉज ये अगर मैं इस पहेली की बात करूँ ना तो थोड़ा सा टफ था, ऐतिहासिक थी थोड़ी सी पहेली, लेकिन क्या गैस किया है भाई, तुम्हें मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। नहीं, 1 करोड़ रुपए तो नहीं मिलेंगे तुम्हें, लेकिन हाँ ये जरूर बता दे कि फरीदाबाद को प्यार बहुत करते हो दिल से, क्योंकि आपने ये जगह बिल्कुल सही गैस की है, और इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से मिलेंगे एक और नई पहेली के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है, खास आपके लिए मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

Hi, I'm Dr. Tanu. I'm an MD medicine diabetologist. I've been practicing for last 10 years. And yes, I also run a supplement company. I am a fellow in regenerative medicine. And my advice today comes for women who have done their first inning and now they're in their second inning. पहली इनिंग में मेनार्की, प्रेगनेंसी, बच्चे, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, सो मेनी थिंग्स. एंड नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रजाइल फेस ऑफ योर लाइफ, वेर आपकी बॉडी में जितनी सारी चीज़ों से आप खूबसूरत लगते थे, आप इतना एक्टिवली काम करते थे, अब वो सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी. अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 चीज़ों पर ध्यान दें. पहली चीज़, हो सकता है कि आप पहले स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट टेक अ गुड मैग्नीशियम सप्लीमेंट एंड ट्राई टू स्लीप बेटर. सेकेंड, प्रोटीन, एज इन हमें बचपन सिखाया गया है कि लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए, बट हम ऑब्वियसली एक 40 साल की जिंदगी में, काम में, बच्चों में, बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं वो चीज़ें. अब आपकी उस एज में हो, अब आपकी बॉडी बहुत वियर ऑफ हो चुकी है, यू नीड मोर प्रोटीन देन बिफोर. थर्ड थिंग, अब आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रह सकती. यू हैव टू एक्सेप्ट द स्किन विल ड्राई आउट, योर वेजाइना विल ड्राई आउट, योर बॉडी नीड्स मोर एंड मोर, यू नो, आपको और अच्छी क्रीम्स और अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट फुल ऑफ हाइड्रेशन यूज़ करनी है. फोर्थ, आपको अब एक ब्रेन फॉग, आपको अपना आधी चीज़ें थोड़ी कम याद रहेंगी, अब आप थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे, ये सब पेरीमेनोपॉज में होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है. ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर्स, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन टाइम, टेक द मेडिकेशन एज एडवाइज्ड, मीट ऑल योर फ्रेंड्स, कीप यू नो योर सेल्फ अराउंड विद पीपल जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि आप अकेला ना फील करो. इस टाइम पे बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं, बहुत लोग बहुत मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं अपने पार्टनर से, दे आर गोइंग थ्रू अ एरे ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग वेन यू आर सिटिंग विद राइट पीपल. पाँचवीं चीज़, यू विल हैव टू रियली रियली टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, बिकॉज अब आपकी जैसा आपका पहले जैसा सुंदर दिखना, आपकी डाइट का चेंज होना, आपका वेट गेन होना, आपको बहुत वेट गेन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी. ये पाँचवीं चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है. मीटिंग अ साइकोलॉजिस्ट, अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी इन योर लिस्ट, बिकॉज राइट नाउ यू आर अर्निंग वेल, यू हैव गुड मनी ऑल्सो, यू हैव गुड लाइफ ऑल्सो, पर ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. थैंक यू डॉक्टर.

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

एक सिंपल सी लाइन मैंने कहीं रीड करी थी जिसके साथ आज शो की शुरुआत हम करेंगे। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। एम्पावर दी वुमेन, एम्पावर दी वर्ल्ड, ये एक सिंपल सी लाइन सुनने में है, बट इसके पीछे का जो मीनिंग है ना, वो अगर आपको समझ आ जाए तो एक अलग फीलिंग आने वाली है। एम्पावर दी वुमेन मतलब अगर आप एक वुमेन को एम्पावरफुल बना देते हैं, उनको ऐसा बना देते हैं कि वो सशक्त हो, अपने काम करने के लिए खुद आगे बढ़ सके, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट एक वुमेन आप बना देते हैं तो आप पूरे वर्ल्ड को एम्पावर कर देते हैं, आप पूरे वर्ल्ड को एक साथ इनहेंस कर दे सकते हैं। ये पावर होती है एक वुमेन एम्पावरमेंट की, और अगर आप ये कर सकते हैं तो समझिए आप एक बदलाव लाने के लिए रेडी हो चुके हैं। आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में और आपके स्टेट में आ रहा है, इधर हर जगह एक चेंज, एक रेवोल्यूशन आने की शुरुआत हो चुकी है अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे या वुमेन को आगे बढ़ाने की सोच भी रख ली है दिमाग में। यू विल ग्रो टू नेक्स्ट लेवल। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

आज सोशल स्पॉटलाइट में इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। हम अक्सर कहते हैं ना इक्वल राइट्स, इक्वल चीजें, तो यहाँ पर ये सारी चीजें कहाँ चली जाती हैं? 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। दरअसल एक महिला है जो बिहार में दरभंगा बस से ट्रैवल करके जा रही थी, तो वहां पर उन्होंने लड़ाई कर ली एक पुरुष से, एक मेल से, ये कह के कि ये विंडो सीट जो है ना ये लड़की को ही मिलनी चाहिए। ये एक सिविक सेंस होना चाहिए आपके अंदर कि एक लड़की आई है तो उसे विंडो सीट दी जाए। मैडम ये कहाँ का सिविक सेंस है पहले तो आप ये बताइए, और इस बिहाफ पे आप उनसे लड़ भी रही हैं कि नहीं आपको विंडो सीट ही चाहिए? मैडम बस में और भी सीटें हैं, आप उनको यूज करके वहां पर बैठ सकती हैं। कोई फीमेल सीट पर बैठा हो आप वहां पर उनको उठा के बैठ सकती हैं, वो बात मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, बट ये विंडो सीट की जो लड़ाई है ये तो कोई सिविक सेंस में भी नहीं आ रही है और वुमेन राइट में भी नहीं आ रही है। और उसके बाद भी हम वुमेन की इक्वालिटी की बात करते हैं ना, तो अगर वो मेल वहां सीट पे बैठा है तो एज अ इक्वल अगर आप वुमेन को ट्रीट करना चाह रहे हैं तो उसका भी उतना ही राइट है उस सीट पे बैठने का, अगर आप इक्वल राइट्स की बात करेंगे। तो आप किस बिहाफ पे वहां पर रोब झाड़ के वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के उसे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि ये देखिए हमारी सीट से नहीं उठ रहा, सिविक सेंस नहीं आज के लोगों में, आपने ये सब बोला और सोशल मीडिया पे आप खुद ट्रोल हो रही हैं, स्पॉटलाइट में आ गई आप निगेटिव वाली। पॉजिटिव होती तो बात अलग थी कि आप अपनी सीट दे देती किसी को कि और उसकी वीडियो डाली होती कि नहीं यार ये देखो मेरा सिविक सेंस ये है, नहीं मेरी जो एक कर्टसी है वो ये है कि उनको नीड थी मैंने सीट दे दी। बट अपनी सीट के लिए लड़ना, वो भी स्पेशली मेंशन करके विंडो सीट नहीं दे रहा है मुझे, ये तो गलत बात है ना मैडम। 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: Hello everyone, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफ स्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो वट एवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: डॉक्टर कॉलिंग.

she have changed the world or she have explored the world for upcoming girls. 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। अक्सर ये होता है ना, एक वुमेन एक नई फील्ड एक्सप्लोर करती है और उसके बाद बहुत सारी वुमेन उसे देख के उस फील्ड में आगे बढ़ने लग जाती हैं। ऐसा ही कुछ आज की जो हमारी वुमेन है उन्होंने करके दिखाया था, जो आज हमारे साथ शी हैव चेंज द वर्ल्ड में है। मैं बात कर रहा हूँ किरण बेदी मैम की। कभी पुलिस की जो वर्दी है ना, वो सिर्फ पुरुषों का या पुरुषों का ही सिंबल माना जाता था या उनकी ही वैकेंसी वहां पर आती थी। फिर आई किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। 1972 में उन्होंने वो कर दिखाया था जो शायद इससे पहले भारत में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। अपनी ईमानदारी, डिसिप्लिन और निडर अंदाज से उन्होंने पुलिस को सर्व किया और एक नई पहचान बना ली। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर जेल सुधारने तक उनके कई फैसलों ने सिस्टम में पॉजिटिव बदलाव ला दिए। और किरण बेदी सिर्फ एक कानून की रक्षक नहीं, बल्कि लाखों महिलाओं का वो विश्वास है, वो हिम्मत है और वो मेहनत करते रहने के पीछे की मिसाल है। और ये कहानी उन सभी लेडीज को मोटिवेट करती है जो सोचती हैं कि इस फील्ड में वुमेन जाके क्या ही कर पाएगी, कैसे ही कर पाएगी। तो किरण बेदी ने कहा है, कोई भी ऐसी फील्ड या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक वुमेन नहीं कर सकती, यानी नारी नहीं कर सकती। नारी ठान ले तो नारी सब कर सकती है, इसीलिए वो है नारी नंबर 1। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यह भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

बाबू वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, एक बिहारी सौ पे भारी, पर ये थोड़ी सी हल्की पड़ गई मेरे को लग रहा है अपने प्लानिंग। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और मैं बात कर रहा हूँ बिहार की उस महिला की जो सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है भाई साहब, और क्यों ना हो। मैडम ये क्या हरकत थी और क्या जरूरत थी आपको ये चीज करने की? आपको मालूम है बिहार एक ड्राई स्टेट है जहां पर लीगली आप कोई भी ऐसी चीज नहीं लेके जा सकते जो वहां पर बैन करी जा चुकी है और बहुत सालों से बैन है। तो ये क्या तरीका था, फर्स्ट क्लास एसी की आपने ट्रेन कराई, टिकट कराई, उसके बाद उसमें आप दो दो अटैचियां भर के लेके जा रही है। वहां शक हो गई पुलिस को कि कुछ तो गड़बड़ है गुरु, इनकी जो ड्रेस है वो तो मैच कर रही है बट जो इनका बिहेवियर है वो मैच नहीं कर रहा है। उन्होंने वहां इन्वेस्टिगेशन करी, उनको रोका, तो बैग खोला तो बैग के अंदर से एक बोतल दो बोतल क्या हजारों बोतलें निकल गई। भैया ये क्या क्या करने के मूड से आप लेके जा रही, ब्लैक में सप्लाई करने के मूड में लेके जा रही थी या खुद इतना कंज्यूम करना चाह रही थी, ये नहीं समझ आ रहा। बट वहां जो आप एटीट्यूड से खड़ी हैं वीडियो में, पकड़ने के बाद भी फोन मिला रही है कि रुको अभी कोई छुड़वा देगा, तो मैडम पुलिस है वो, और आपको इलीगल चीज करते हुए पकड़ा गया है जो बिहार के अंदर एटलीस्ट लीगल नहीं है, बाकी स्टेट में लीगल होगी। और ऐसे केस बिहार से क्यों आते हैं जब वहां पर बैन है, तो बिहार वालों को ऐसा क्या है भाई, बिहार के बाहर जाओ अगर कुछ आपको ऐसा कंज्यूम भी करना है तो, उस स्टेट के अंदर ले जाने के पीछे आप लोग क्यों पड़े रहते हो। इससे पहले भी बहुत बार पकड़े गए, फिर से पकड़े गए, आगे की कहानी भी नहीं पता फिर कब पकड़ी जाए। बट ये जो एक फीमेल के थ्रू पकड़े गए ये मेरे लिए एक थोड़ा सा शॉकिंग था यार। मेल तक तो हम उम्मीद कर रहे थे कि चलो ब्लैक कर रहा होगा, यहां से लेके आ रहा होगा, यहां से लेके आ रहा होगा, बट फीमेल, माना इक्वालिटी भाई, कंधे से कंधा मिला के चलना, बट ऐसे भी नहीं मिला के चलना यार कि इन चीजों में आप बिल्कुल इक्वल इक्वल आ जाए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

आज मैं एक ऐसे लीगल राइट की बात वुमेन्स की करने वाला हूँ जो शायद मुझे ही आज से पहले नहीं पता थी, ये मुझे आज पहली बार पता चली है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ है। राइट टू फ्री लीगल एड, अब इसका मतलब क्या है? मुफ्त कानून मदद का अधिकार। अब आप सोच रहे होगे ना, मुफ्त कानून मदद का अधिकार, ये सब क्या बोल रहे हो? देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप एक भारत में रहने वाली महिला हैं और आपके पास वकील करने का पैसा नहीं है, वकील की फीस देने का पैसा नहीं है, कोर्ट के खर्चे उठाने का पैसा नहीं है, तो आपके पास ये राइट यूज करने का अधिकार है, जो राइट बनी है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत 1987 में, जिसके तहत ये कहा जाता है अगर आपके पास अपने वकील को देने के लिए पैसा नहीं है या कोर्ट या लीगल चीजों के लिए पैसा नहीं है तो आप यूज कर सकती हैं फ्री लीगल एड, यानी कि मुफ्त में आपकी मदद की जाएगी एक लीगल केस को लड़ने के लिए या उसे कोर्ट तक पहुंचाने के लिए। ये राइट सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के पास है। कोर्ट फीस में और कुछ नए कानून जो खर्चे हैं उनमें आपकी मदद की जाएगी, पूरी तरह से फ्री नहीं है बट आपकी हेल्प की जाएगी, कितना कम से कम में वो चीज आपका करवाया जा सकता है। तो ये राइट सिर्फ एक महिला के पास है और ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि DLSA, अदरवाइज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि NALSA के अंदर आती है। आप वहां पर जाके मदद मांग सकते हैं ऐसे किसी केस में जब आप सक्षम नहीं है कोर्ट फीस भरने के या फिर अपने किसी भी वकील की फीस भरने में, तब ही आप मदद ले सकते हैं। पहले आपको वो प्रूफ करना होगा कि आप सक्षम नहीं है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

ये बात हम कभी नोटिस ही नहीं करते है ना, और इस साइड से हम कभी सोचते ही नहीं है मर्द के लिए। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। आखिर चाहिए क्या एक मर्द को, कभी आपने ये सोचा है? देखिए, उसे ज्यादा आपसे कुछ चाहिए नहीं, ना उसे महंगे गिफ्ट चाहिए, ना उसे शायद आपसे बहुत ज्यादा तारीफ चाहिए। हो सके तो बस उसको इतना चाहिए कि जब पूरी दुनिया उसे बोले ना तुम मर्द हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें नहीं रोना चाहिए, तो आप बस उसके कंधे पे हाथ रख के आराम से उससे ये पूछे, आज थक गए होगे, कोई बात तो नहीं, बताओ अगर कुछ बताना चाह रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में। और अगर वो पलट के आपको बता दे तो वही आपकी पॉजिटिव जीत है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा था जो शायद बाहर दुनिया में किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था, बट उसने आपको चुना है वो शेयर करने के लिए, तो आप उसकी लाइफ का वो खास पार्ट हो। और अगर आप भी नहीं पूछ रहे हो तो शायद वो किसी को वो बात शेयर नहीं कर पा रहा है। तो एक मर्द को क्या चाहिए? एक ऐसा पर्सन जिसके साथ वो अपनी चीजें शेयर कर सके, उसे बता सके, और वो खुद से आगे नहीं बताएगा तो प्यार से पूछने वाला इंसान सबसे पहला उसको चाहिए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
0: डॉक्टर।

हाँ जी, तो 27 तारीख को आप आ रहे हो ना सूरज कुंड मेला ग्राउंड में? अरे अभी तक प्लान नहीं बनाया? 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। और प्लान नहीं बनाया तो भैया अब बना लो, क्योंकि फरीदाबाद हाफ मैराथन 2026 27 तारीख को होने वाली है। सूरज कुंड मेला ग्राउंड से ये बिगिन होगी और इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले तो यही बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी कर लो www.halfmarathon.in पे जाके। और इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आए तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे @RJ तुषार के नाम से, वहां आके पूछ लेना। और ये जो मैराथन है ये 3 फेज में होने वाली है। एक होने वाली है 21.1 किलोमीटर, फिर होने वाली है 10 किलोमीटर, फिर होने वाली है 5 किलोमीटर। तो ये 3 तरह की होने वाली है, आप जिसमें बेस्ट आपको लग रहा है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 5 किलोमीटर वाली फन रन होने वाली है जो आपके लिए बहुत हैक्टिक नहीं होने वाली है। और सारे जो इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड्स हैं उनको ये मैच करने वाली है, एक प्रोफेशनल लेवल मैच करने वाली है, जिसमें टाइम वगैरह सब वैसे ही नोट करा जाएगा। प्लस प्राइज मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस रेस का होने वाला है। और इसके पीछे का थीम ही है ना, एक हेल्थ के लिए आपके कदम उठाने का टाइम आ चुका है। और नशा मुक्त हरियाणा जो मेन मोटिव है इस पूरी मैराथन का, वो हम यहाँ पर लेके चलने वाले हैं। तो 27 तारीख इस मैराथन का पार्ट बनना 1% भी ना भूलिए, हो सकता है आपकी फिटनेस जर्नी यहीं से बिगिन हो जाए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यह भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।

बहुत सारे पंजाबी गानों में, बहुत सारे बॉलीवुड गानों में हमने ये अक्सर सुना है, मैनू जुत्ती लै दे, जुत्ती तेरी चमक दी, जुत्ती तेनू फब दी, ऐसे बहुत सारी चीजें हमने सुनी, बट ये जुत्ती की हिस्ट्री क्या है? 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और ये जो फीमेल जुत्ती है ना, इसकी कहानी भारत की परंपरा से जुड़ी हुई है। जुत्ती का जन्म लगभग 400 साल पुराना है, मुगल काल में इसकी शुरुआत करी गई थी। तब राजाओं महाराजाओं के शाही पोशाक का ये पार्ट हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये और सुंदर बनती गई और धीरे धीरे पंजाबी, राजस्थानी, उत्तर भारत में इसका जो लोकप्रियता है वो बढ़ती चली गई। वहां पर लोग इसे और ज्यादा स्केल पर पहनने लगे, अलग अलग फैशन सेंस के साथ पहनने लगे। पहली की जो जुत्ती होती थी ना, वो चांदी की होती थी, हाथ से करी गई एम्ब्रॉयडरी की होती थी, और इसमें धीरे धीरे चेंज करते हुए इसे नॉर्मल जुत्ती का जो आज हम रूप देख रहे हैं उसमें लेके आए थे। और जुत्ती की सबसे खास बात होती है उसके जरी का काम, मोती का काम, मिरर्स का काम, जो उस जुत्ती के फैशन को इनहेंस कर देते हैं। आज फीमेल जुत्ती की परंपरा फैशन का एक परफेक्ट मेल हो चुकी है। जब जब उन्हें एथनिक कुछ पहनना है या मॉडर्न आउटफिट में एथनिक का कुछ टच देना है तो वो जुत्ती का यूज करती हैं। और पंजाबी कल्चर में जुत्ती का एक अलग ट्रेडिशन है और एक अलग सा रिवाज है। अगर आपने जुत्ती पंजाब में पहन ली है या पंजाबी जुत्ती पहन ली है तो वो रौब आपका वहां पर थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: कुछ हटके। डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: मेरे को ऐसा लग रहा है ना, आज मेरा लर्निंग सेशन है, आज मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट है ना, उनसे मैं जितना ग्रैब कर सकता हूँ, जितना सीख सकता हूँ ना, वही मेरी बेस्ट लर्निंग होने वाली है। डॉक्टर काची नागिया आज हमारे साथ हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा करा है, प्लस इसके साथ साथ फैशन फील्ड से बहुत लंबे समय तक एसोसिएट रही थी। मैम सबसे पहले तो महारानी के स्टूडियोज में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू तुषार जी हमें बुलाने के लिए और ये चांस देने के लिए, ग्रेटिट्यूड।
0: मैम ये मेरे लिए एक न्यू चांस होने वाला है, क्योंकि आपकी जब मैंने ऐसे जर्नी के बारे में जाना, फैशन डिजाइनिंग, फैशन फील्ड से रहने के बाद फिर आपने वेदिक टैरो एस्ट्रोलॉजी इसमें स्विच लिया, तो ये एक मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है पूरी आज जर्नी में।

0: यानी कि फैशन की. देन आई गॉट मैरिड और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया. ग्रेजुअली वो इंक्रीज होता गया. आई स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग. मेरा अपना एक ब्रांड है एंड एवरीथिंग वॉज गुड लाइक यू नो. एंड वी स्टार्टेड वर्किंग विद रिलायंस थ्रू एंड थ्रू यू नो बिजनेस पर्सन. फिर 2018 मुझे टैरो में हमेशा इंटरेस्ट था पर 2018 मैं किसी से करवाती होती थी और हर हफ्ते कुछ ना कुछ पूछ लेती थी. फिर देन आई स्टार्टेड लर्निंग टैरो. 2018 मेरी मॉम की डेथ हो गई तो उन्होंने एक पंडित जी के पास पहली बार हम गए तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप सिर्फ और सिर्फ हीलिंग के लिए बने हो. तो तब मुझे लगता था एज अ बिजनेस पर्सन हीलिंग कहाँ यार, हम तो बिल्कुल ही अलग फील्ड से हैं. और जब मॉम की डेथ हुई तो ऐसे ही मैं पढ़ने के लिए 3 महीने सिर्फ एक पंडित जी के पास बैठ गई क्योंकि मेरा मन अशांत था. और वहाँ से मेरी एक जर्नी शुरू हुई. देन आई टुक एडमिशन इन भारतीय विद्या भवन. आई डिड टैरो में PhD. आई डिड हीलिंग रेकी कोर्सेस. सो एंड इट हैज बीन अ वंडरफुल जर्नी.
1: PhD इन टैरो.
2: मैम ये जो आपने डिफरेंस बताया है और दोनों के बीच का रिलेशन बताया और कैसे आपने जर्नी स्विच करी बताया है, मेरे को लगता है बहुत सारी फीमेल यहाँ पर मोटिवेट होने वाली हैं कि आपको रुकना नहीं, आपको अपने चीजें एक्सप्लोर करनी है, आपको ढूंढना है कि आप बेस्ट क्या कर सकते हैं. और ऐसी ही बेस्ट चीजें आगे हम आपको और गाइड करेंगे कुछ गानों के बाद ओनली ऑन रेडियो महारानी कुछ हटके.

0: हम सब अपनी लाइफ में ना बहुत तेज भागने की कोशिश कर रहे हैं और चीजें बैलेंस करना ही भूल जा रहे हैं। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर कांची नागिया। मैम, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम यही बात आपसे जानना चाहेंगे, आजकल जो हमारी लाइफ है ना वो बहुत फास्ट हो चुकी है, जिसमें स्ट्रेस भरी लाइफ हो रही है, बहुत सारे करियर स्विचेस हो रहे हैं, फैमिली और पर्सनल लाइफ की जो ग्रोथ है उसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों के बीच में। तो ऐसी चीज पे आप क्या सलाह देना चाहेंगे या ये चीज आप कैसे बैलेंस कर रही हैं?
1: छोटी सी सलाह ये है औरतों के लिए कि एक तो यू कांट स्टॉप इन योर लाइफ, है ना, एक फुल स्टॉप नहीं कर सकते। जब मेरे ट्विंस होने वाले थे तो मैं बेड रेस्ट पे थी पूरा एक साल, लेकिन मैंने अपनी फैक्ट्री तब भी चलाई। मैं वो घर ले आई फैक्ट्री, मुझे मना हो गया तो सारे लोग घर बैठ के काम करते थे, है ना। जब हमने ये शुरू किया तो आप सब चीजों के लिए निकाल सकते हो वक्त। मैं ट्रैवल भी करती हूँ और अब मेरी इच्छा है कि मैं एक ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाऊं जहां मैं हर मंदिर में जाके अपना एक अलग एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर वगैरह करूँ। आप कर सकते हो, मल्टीटास्किंग एक औरत कर लेती है, कर सकती है। आपको खाली टाइम डिवाइड करना आना चाहिए, है ना, एंड लाइफ इज टू शॉर्ट भैया, सब कुछ कर लो।
0: मेरे को लगता है कि मैम ने जो बात बताई है वो सुन के या वो चीज समझ के अब हमें बैलेंसिंग करना तो थोड़ा बहुत आ ही जाएगा, बट धीरे धीरे टाइम के साथ प्रैक्टिस करते हुए आएगा, वो बात मैं बिल्कुल बिलीव कर रहा हूँ, बट हमें करना आज से शुरू करना है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है। बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: चश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: सही श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

everyone. Myself, Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. To हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज़ नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप

0: नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी। अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफ स्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है। तो वट एवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा। और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ। थैंक यू।
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: यहाँ पर हम आज अपने एक्सपर्ट से यानी कि हमारी गेस्ट से कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, कांची मैम यहाँ पर हमारे साथ हैं। मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में बहुत सारी गाइडलाइंस, बहुत सारी चीजें लोगों को सजेस्ट करती रहती हैं, बट ऐसा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस आपका है जहां पर आपने किसी को कुछ गाइड किया और वो सक्सेस स्टोरी आप यहां शेयर करना चाहते हैं, या उन्होंने आके आपको कुछ फीडबैक उसके बाद दिया हो और आज वो आप यहां पर शेयर करना चाहते हैं?
1: तो मेरे पास अब इस बात को 2 साल हो गए, 2 केसेस थे। मैंने कुंडली पढ़ी उनकी, उसमें मुझे अब्यूज दिख रहा था, है ना, लेडी के लिए। जब वो हस्बैंड वाइफ आए तो वो किसी एंगल से, क्योंकि हस्बैंड एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरे पास आते थे, मुझे कहीं अब्यूज लगता ही नहीं था क्योंकि वो इतने अच्छी तरह बात करते थे कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ है प्रॉब्लम। फिर वो दोबारा जब आए तो मेरा मन परेशान हो गया, क्योंकि कुंडली में मुझे दिखता था, कार्ड्स में भी दिखता था, और वो अपनी वाइफ को अकेले नहीं छोड़ते थे, है ना। फिर मैंने अपने फ्रेंड से कुंडली पढ़वाई, उन्होंने कहा हाँ अब्यूज है और तगड़ा वाला अब्यूज है। एक बार उनकी वाइफ अकेले आई कुछ सूट सिलवाने, तो मैंने पूछा, तो मतलब गूज बम्स आ गए मुझे जब पता लगा कि कितना अब्यूज है, है ना। फिर मैंने उन्हें सलाह दी कि अगर आप इन्हें नहीं छोड़ सकते तो यू नीड टू गेट इनटू अ थेरेपी। सो टुडे शी इज क्वाइट बैलेंस्ड, है ना, शी इज कम 50% कम आउट ऑफ इट। सेकेंड केस में एक और कहूंगी, उसमें बेटा और मदर आए, 27 ईयर ओल्ड बेटा था, मदर के साथ आए, मुझे एक और अब्यूज केस लगता था। मैंने जब उनको पूछा तो वो अकेली थी, तो उन्होंने अपने पैर दिखाए जहां मारा हुआ था हस्बैंड ने, फिर रोज मारते थे, है ना। तो मैंने उनको बोला कि आप प्रोफेशनल हो, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट। आज वो लेडी अपना घर है उनका और एक अच्छा कैरियर है, है ना, और आई एम हैप्पी टू सी हर, शी इज गॉट आउट ऑफ। तो मैं घर तोड़ने में विश्वास नहीं करती, लेकिन जहां आपको अब्यूज मिल रहा है वहां से आपको हिम्मत करके निकलना पड़ेगा।
0: ये इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है, हम पास्ट अपने फैमिली में देखते हुए आ रहे हैं और वो भी शांत रह जाते थे, इस वजह से आगे की जनरेशन भी शांत रह जाती है। बिल्कुल,
1: एक्चुअली मैं पास्ट लाइफ भी करती हूँ, तो मैंने जब उनका पास्ट लाइफ किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो मुझे लगा कि ये हर लाइफ में एक अब्यूज था और ये अब यहाँ तोड़ना चाहिए इसको, इस साइकिल को, अगर अभी भी नहीं तोड़ेंगे तो आगे भी ऐसे ही जाएंगे। सो शी वर्कड ऑन हर सेल्फ, शी इज अ लाइफ कोच नाउ, you know, and beautifully running her life.
0: तो मैम इसके लिए तो थैंक यू, मैं आपको बोलता हूँ कि आपने किसी की लाइफ में एक ऐसा चेंज लाके दिया कि वो अपनी लाइफ में इस ग्रोथ या इस लेवल पे कर पा रही है।
1: अब मुझे उनको देख के अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच मैम ये बात यहाँ पर रखने के लिए, और मेरे को लगता है जितने भी लिसनर्स है ना वो इस चीज से बहुत मोटिवेट होने वाले हैं, बहुत कुछ कनेक्ट करने वाले हैं और बहुत कुछ नया यहाँ पर उनको सीखने मिलने वाला है आज इस इंटरव्यू के बाद। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात यह भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्थ ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।
1: मैम ये थोड़ा सा सीरियस वे में भी जा सकता है, या आप इसे बेटर कैसे एक्सप्लेन कर सकती है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, डॉक्टर कांची नागिया यहाँ पर हमारे साथ हैं, और इसी के बारे में हम आगे जर्नी में बात कर रहे थे। मैम रिलेशनशिप और मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, कंसर्न करने आते होंगे, रीडिंग कराने आते होंगे, वैदिक के थ्रू या टेरो के थ्रू। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है, इंसान क्या फेस कर रहा है, या आप उन्हें किस तरह से अप्रोच करके या किस तरह से आप उन्हें सजेस्ट करते हैं?
2: एक वुमन को ये मैसेज देना चाहेगी कि अपनी ना स्ट्रेंथ को कभी कम नहीं सोचना चाहिए। यू कैन डू इट, है ना। नॉट एट 30, नॉट एट 20, 30, 40, 50 पे तो कभी भी नहीं, है ना। यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू इन लाइफ। फटाफट करो, रुको मत, है ना। यू नीड टू कीप वॉकिंग, एंड व्हेन यू वॉक देन ओनली यू विल फाइंड योर मिसल, है ना।
1: बिल्कुल। अब मेरे माइंड में एक सवाल और स्टक हो गया, पीएचडी इन टैरो, मैम क्या है वो पूरी स्टडी? बहुत सारे लोग, मेरे को लगता है सोशल मीडिया के जमाने में, सोशल मीडिया पे सीख लिया और फिर लोगों की रीड करना शुरू कर दिया।
2: हाँ जी।
1: बट आपने वो प्रॉपर पीएचडी कराए, तो क्या एक बड़ा डिफरेंस इसके बीच में आप बताएंगे?
2: मुझे लगता है सीखने की कोई सीमा नहीं होती, निकलता ये सब हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से है, बट टैरो एक फॉरेन मोडालिटी है। मैंने लंदन से भी सीखा है, अभी मैं 3 दिन का कोर्स भी करके आई हूँ। पीएचडी इन टैरो में क्या है कि पूरे इंटायरली हम अंदर तक जाते हैं, एक कार्ड के मतलब के, एक एक जो उसके अंदर फोटोग्राफ के अंदर सिंबल है उसका क्या मतलब है, और वो दूसरे कार्ड के साथ क्या दे रहा है, उसके प्लैनेट्स क्या हैं, आपको कब उसकी ज़रूरत है, नहीं है, तो और केस स्टडीज़ होती है, है ना। तो उससे क्या होता है, जब आपके पास एक कोई जना आता है, इंट्यूशन भी बहुत मैटर करती है इस सब में। तो मैंने मेडिटेशन करके अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाई, लेकिन साथ साथ पीएचडी करने के बाद जो इन डेप्थ एक हफ्ते के कोर्स में नहीं आ सकता, है ना। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप इन डेप्थ नहीं जा सकते। तो टचवुड, अभी जब कोई मुझे पलट के कहता है ना कि मैम आप कैसे कर लेते हो, जो बोलते हो वो शाम तक हो जाता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की।
1: मेरे को लग रहा है जब मेंटोर आपकी तरह हो या गाइडेंस आपकी तरह मिल रहा हूँ मैम, तो किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। जिस स्मूथनेस के साथ आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हैं कि उनको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या आप क्या स्टेप फॉलो करती हैं, तो हैट्स ऑफ मैम कि आप ऐसे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ला रही हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला रही हैं। थैंक यू सो मच उन सबके बिहाफ पे मैं यहाँ पर आपको आज बोल रहा हूँ। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: टाइम फॉर अ मैसेज, एक ऐसा मैसेज जो शायद आज आपको मोटिवेट कर देगा। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, डॉक्टर काची नागिया यहाँ पर हमारे साथ हैं, टैरो कार्ड एंड प्लस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैम ने महारत हासिल करी हुई है, प्लस फैशन का भी बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड मैम का रहा है। मैम मैं ये जानना चाहूंगा, जितनी भी नारी नंबर वन है हमारी जो अभी हमको सुन रही है देश भर में, तो उन महिलाओं को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगी ताकि वो भी आपसे इंस्पायर हो इनरली और स्ट्रांग बन सके और अपनी एक पहचान कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरी दुनिया में बना सके।
1: चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, यू कांट स्टॉप वॉकिंग, है ना। यू हैव टू कीप ट्राइंग, यू हैव टू कीप डूइंग थिंग्स, दैट्स द वे टू हैव सक्सेस। एंड गाइस, यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, एक चीज करके मत बैठ जाओ, है ना। यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, यू हैव द कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो।
0: मीन्स अ लॉट मैम कि आपने टाइम निकाला, हमारे साथ जुड़ी और हमारी जितनी फीमेल्स हैं उन्हें और मोटिवेट करने में इस जर्नी में हमारा साथ आपने दिया, और आई होप आपको गुड हेल्थ के लिए गुड विशेस। मैम मेरी तो बस गुड विशेस यही है कि आपकी हेल्थ जो है वो और अच्छी रहे, आप हेल्दी रहें और ऐसे ही आगे और लोगों को मोटिवेट करती रहें, उनको उनकी लाइफ में एक नया विजन देती रहें जैसे आप अभी तक दे रही हैं। थैंक यू सो मच मैम और फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस ऑन 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स.
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स.
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड.

0: फिल्मी फ्लेवर,
1: लाइट्स कैमरा और एंटरटेनमेंट का फुल ऑन तड़का। कुछ कहानियाँ स्क्रीन पर चलती हैं और कुछ दिल में रह जाती हैं, और कुछ फिल्मी किस्से ऐसे होते हैं ना जो सालों बाद भी सुनने में उतने ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो चलिए आज के फिल्मी फ्लेवर में बात होगी सिनेमा की, स्टार्स की, म्यूजिक की, ओटीटी की और साथ ही साथ उन सभी फिल्मी अपडेट्स की जो आपके एंटरटेनमेंट क्वोशेंट को रखेंगे एकदम ऑन पॉइंट। मैं हूँ आरजे पलक और शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

रणबीर कपूर का बर्थडे आ रहा है और फैंस को लगा था कि गिफ्ट में मिलेगा लव एंड वॉर का टीजर, लेकिन भंसाली साहब ने मन ही मन में कहा कि थोड़ा इंतजार और करो भाई, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है ना। जी हाँ, संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म लव एंड वॉर, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल नजर आने वाले हैं। इसका टीजर पहले 28 सितंबर को रिलीज होने की उम्मीद थी, जिस दिन रणबीर कपूर का बर्थडे भी है, लेकिन अब अपडेट ये है कि 28 सितंबर को टीजर रिलीज नहीं होगा। मेकर्स ने इसे रणबीर की फिल्म रामायणा के साथ थिएटर्स में दिखाने का प्लान बनाया है, और कहा जा रहा है कि लव एंड वॉर की शूटिंग सितंबर के पहले हफ्ते में ही पूरी हुई है और भंसाली टीजर को सीधे ऑनलाइन डालने के बजाय थिएटर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। और ऑनेस्टली, एक ही एक्टर की दो बड़ी फिल्मों के साथ टीजर दिखेगा तो बस तो डबल होना ही है, नो डाउट। तो अब देखना यह है कि रामायणा के साथ लव एंड वॉर का टीजर जब बड़े पर्दे पर आएगा तो ऑडियंस का रिएक्शन कैसा होता है। चलिए, फिलहाल वक्त हो गया है एक गाने का। गाने के बाद फिर लौटूंगी यहीं। शो चल रहा है फिल्म विद फ्लेवर, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।

0: Hello everyone, myself Dr. Rajni Benivar. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. To हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज़ नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: Doctor calling.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अभी नीम करोली बाबा पर बनी हनुमान अंश को लेकर खूब बातें हो ही रही हैं और अब इसी स्पिरिचुअल जोन से जुड़ी एक और कहानी बड़े पर्दे पर आने वाली है। जी हाँ, अब कहानी होगी साईं बाबा की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साईं बाबा का किरदार निभाने वाले हैं हमारे बेहद टैलेंटेड एक्टर संजय मिश्रा। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 13 साई का फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया है, जिसमें वो बिल्कुल साईं बाबा के रूप में नजर आ रहे हैं। और फिल्म के पोस्टर पर लिखा है सबका मालिक एक, और ऑनेस्टली ये लाइन अपने आप में ही ना काफी कुछ कह देती है। और अब बात करें रिलीज की, तो 13 साई 5 फरवरी को सिनेमा घर में दस्तक देगी। यानी इस कहानी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। तो देखना होगा कि संजय मिश्रा साईं बाबा के किरदार को किस तरह पर्दे पर उतारते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है गाने का। गाने के बाद फिर लौटूंगी। यहीं शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ऑनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।

0: इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है, और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर, भाई साहब करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं, आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग, नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।
1: What's up, dog?
2: Shit, bro, this shooting in the wind, what's good with it?
1: Watch out, man, watch out, Del G coming, man.
2: Oh, word? They say he the GOAT, he all the way tapped in.
1: Yeah, dog, he killing the game.
2: Oh, Del G, watch out.

0: 89.6 रेडियो महारानी कुछ हटके।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: मुझे वीराना पसंद है, समझे?
2: कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, श्राप बनकर नेटफ्लिक्स के हॉरर सेक्शन की तरह हमेशा जिंदा रहती है। एक शापित हवेली, एक राज जो मौत से भी ज्यादा भयंकर था, और एक जैस्मिन जो सिर्फ नाम से मासूम थी। एक दिन उसने एक तांत्रिक से मेकओवर पैकेज ले लिया और बस अब वो सिर्फ लड़की नहीं डायन बन चुकी थी। पर हर बुराई का अंत होता है, पर इस बार श्राप लाइफ टाइम वारंटी के साथ आया था। सालों बाद हवेली एक बार फिर जाग गई और इस बार नए मेहमान की तलाश थी।
3: तो आज रात पुरानी हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना।
2: वीराना सिर्फ एक जगह नहीं, एक हॉरर फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन है। जो आया वो गया नहीं, और जो गया उसका लास्ट सीन अब तक एक्टिव है। अगर कभी किसी वीरान हवेली में फ्री स्टे मिले तो समझ लो पेमेंट तुमसे नहीं, तुम पर होने वाला है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स.
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स.
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: सोचिए आज के टाइम में अगर किसी स्टार से कहा जाए कि आपको लगातार 24 घंटे एक गाने की शूटिंग करनी है, तो शायद सबसे पहला सवाल वो यही पूछेंगे कि ब्रेक कब मिलेगा। लेकिन 90s में ना इतनी लग्जरी नहीं थी, ना आराम करने का इतना इंतजाम हुआ करता था। बस कैमरा चलता था और स्टार्स अपने एक्शन मोड में आ जाते थे। और ऐसा ही कुछ हुआ था 90s की बेहद खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस नीलम के साथ। जी हाँ, सनी देओल के साथ उनकी फिल्म पाप की दुनिया तो आपको याद ही होगी, है ना। इस फिल्म का गाना था चोरी चोरी यूं जब हो, जिसकी शूटिंग के दौरान नीलम ने लगातार करीब 24 घंटे काम किया। अब सोचिए जरा, 24 घंटे तक गाने की शूटिंग, ना प्रॉपर रेस्ट, ना आराम का मौका, और आखिरकार लगातार काम करने का असर ऐसा हुआ कि नीलम सेट पर ही बेहोश हो गई और उन्होंने खुद एक रियलिटी शो में इस किस्से का खुलासा किया था। यानी कि 90s की फिल्मों में ना सिर्फ प्यार की कहानी ही नहीं होती थी, बल्कि पीछे की कहानी भी काफी मेहनत वाली होती थी। फिलहाल वक्त हो गया है एक गाने का, और गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अगर बचपन में आपने अली बाबा और 40 चोर की कहानी सुनी है तो अब तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार चोर नहीं भूत मिलने वाले हैं। जी हाँ, अली बाबा और 40 भूत नाम की एक नई हॉरर कॉमेडी वेब सीरीज आने वाली है, जो कि 11 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी। और इस कहानी में लीड रोल में है आशा नेगी, जो निभा रही हैं अलीशा यानी कि अली का किरदार। अली एक न्यूरो साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं और भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपने लापता पिता की तलाश में एक ऐसी मिस्टीरियस दुनिया में पहुंच जाती हैं, जहां उनका सामना होता है 40 भूतों से। और यहीं पे उनकी मुलाकात होती है पुलिस अफसर बाबा यानी कि विशाल वशिष्ठ से, जो भूतों पर पूरा यकीन करते हैं। अब एक तरफ है साइंस और लॉजिक और दूसरी तरफ है भूत और बिलीफ, और इन दोनों की जोड़ी मिलकर सुलझाएगी आखिर ये 40 भूत आए कहाँ से और अली के पिता गायब क्यों हुए। मतलब इस बार अली बाबा की कहानी में खुलजा सिमसिम से ज्यादा भूत जी सामने आइए प्लीज वाला मामला होने वाला है। फिलहाल वक्त हो गया एक गाने का, फिर लौटूंगी इसी जगह। मैं हूँ पलक और आप सुन रहे हैं फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: सारेगामा कारवा, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

कहते हैं ना, शादी के बाद बहुत कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन अगर शादी से पहले आपने ये बोल दिया ना कि हाँ जी मुझे तो फर्राटेदार इंग्लिश आती है, और शादी के बाद वही इंग्लिश ने आपको फंसा दिया हो बहुत बुरी तरह। तो इसी मजेदार सिचुएशन को लेकर आ रही है एक पंजाबी कॉमेडी ड्रामा फिल्म टुट पैनी इंग्लिश ने। और इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की के इर्द गिर्द है जो शादी से पहले दावा करती है कि उसे इंग्लिश खूब अच्छे से आती है, लेकिन शादी के बाद जब असली इंग्लिश सामने आती है ना, तो शुरू हो जाते हैं फनी सिचुएशंस और फैमिली ड्रामा। और इस फिल्म में नजर आएंगी सिमी चाहल, सतविंदर सिंह और मैंगी ठक्कर, और इसे डायरेक्ट किया है वरेंद्र शर्मा ने। और ये फिल्म आपको थिएटर में देखने को मिलेगी 25 सितंबर को। तो अगर आपकी भी इंग्लिश कभी कभी आई एम फाइन से आगे जाने से मना कर देती है ना, तो शायद ये फिल्म आपको थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल लगने वाली है। फिलहाल वक्त हो गया है गाने का, गाने के बाद फिर यहीं लौटूंगी। शो चल रहा है फिल्मी फ्लेवर ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी पर।

और इस हफ्ते के सिनेमा कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस घर की तरफ जहां लोगों को एंट्री लेने से पहले शायद अंदाजा भी नहीं होता कि बाहर निकलते निकलते उनकी जिंदगी दोस्त और दुश्मन सब बदल चुके होंगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 20। और भाई, इस बार कंटेस्टेंट की पूरी टोली आ चुकी है। सीजन की सबसे शॉकिंग और शायद सबसे एक्साइटिंग एंट्री है मैरी कॉम। अब सोचिए, बॉक्सिंग रिंग में सामने वाले को नॉकआउट करने वाली मैरी कॉम अब बिग बॉस के घर में आर्ग्यूमेंट्स और किचन ड्यूटीज हैंडल करेंगे। और ऑनेस्टली ये सब देखने में बहुत मजा आने वाला है, मुझे तो भाई बहुत मजा आएगा। उनके अलावा माही विज है, कनिका मान है, पंचायत वाले आसिफ खान है और भोजपुरी सिनेमा की आम्रपाली दुबे है। सोशल मीडिया सेंसेशन आशिफा खान और कई अलग बैकग्राउंड के लोग भी इस बार एक ही छत के नीचे बंद होने वाले हैं। मतलब इस बार पूरा घर एकदम मिक्स्ड प्लेटर है। एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं और यही बिग बॉस की असली खूबसूरती है। आपको कभी नहीं पता कि सबसे शान दिखने वाला इंसान कब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड निकल जाए। तो पॉपकॉर्न रेडी रखिए क्योंकि अभी तो घर में एंट्री हुई है जनाब, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। मैं आपके साथ गीत हूँ और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी पर सिनेमा का कैप्सूल।

पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: फिल्में सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती, बल्कि कुछ फिल्में तो हमारी यादों में परमानेंटली रिलीज हो जाती हैं। कभी कोई डायलॉग हमारी पर्सनालिटी बन जाता है, तो कभी कोई गाना हमारी पूरी लव स्टोरी का बैकग्राउंड म्यूजिक, और कभी कोई कैरेक्टर ऐसा होता है ना कि सालों बाद उसका नाम सुनते ही ना हम उसका चेहरा डिकोड कर लेते हैं। और शायद यही तो फिल्मों की सबसे खूबसूरत बात है कि फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन उसका असर खत्म नहीं होता। तो आज के फिल्मी फ्लेवर को यहीं शट डाउन करते हैं। मैं हूं आरजे पलक और अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना, अभी जाऊंगी तभी तो कल फिर आऊंगी। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी, नए किस्से और ढेर सारी फिल्मी फ्लेवर्स के साथ। तब तक ये गाना एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: जिनके कंधों पर बचपन बीता, अब छह बूढ़े कंधों को छाती न
2: मचो।
1: हमारा सुकून है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। लोग ये कुछ कह रहे हैं कि खुद को कमजोर मत समझ लेना, क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। तो बी कॉन्फिडेंट।

0: जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है और हम हर दिन पूरे बेहतर बनते जाते हैं। 2025 को थैंक्स और 2024 को वेलकम। चलिए नए गोल्स, नई एनर्जी और फ्रेश माइंड के साथ 2025 में कदम रखें।
1: महारानी
0: योग राइट पॉजिटिव एंड ब्यूटिफुल न्यू ईयर 2026।

0: सोचने वाली बात और कहानियों में है जिंदगी का हैवा। कभी झूठ ही सुने यही बोले ये गुइजा बात। हम है आपका अपना रेडियो रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ
1: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
0: प्यार का तो पता नहीं प्यार के चर्चे हर जबान पर है।
2: सुमित क्या करता है उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का धोखा देकर फोटो भी निकाल लिया उसे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन और आप कभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरी मैसेज के साथ आई लिंक पर क्लिक न करें। बैंक कभी भी OTP नहीं मांगता इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आई कॉल पर भरोसा न करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती इसलिए पहले टेक्स्ट को क्रॉसचेक करें और फिर शेयर करें। और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। 10 से 20 से बी अवेयर।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कदर करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे आगे खाली हो जाएगी
1: क्या
0: बोल करिए सारी भीड़ अंदर बुला
1: लेते
0: हैं रोने वाले भैया की पचास सवारी अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बैठा लेते हैं।
1: अरे आया उस दिन तो गोली का चला भी रहे थे
0: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल लक्ष्य बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
1: हाँ हाँ दिमाग पर दही हो रखा है और ऊपर से तू भी मैं तो चली तू बोल रहा है
0: सुनो
1: बाय।

0: शुरू हो जाओ।
1: हाँ तो अर्ज क्या है? अभी करते
0: हैं सर।
1: स्पैम कॉल करके आजकल जमा
0: करना बाबा
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें जान देते हैं।
0: तुम अभी इसे लाए
1: सुनो आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा बस मेरी शायद सुन लो
0: फिर
1: ये सुनते ही पहले प्रोसेस में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह तुम्हारी शायरी का खुद को फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो शांत हो गए।
3: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: ज्यादा चिल्लाने का समझा ही नहीं जाता दिल दूर हो जाते
5: हैं।
4: आती अब आती और बातें फिर देखती जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: उनकी स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने दुनिया के सबसे बड़े पर छुपा रही है।

0: कुछ निश्चित होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्रॉप मैसेज में सेव हो जाते हैं जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: कभी फ्रेंडशिप अंकल रह जाती है तो कभी मोहब्बत कम्प्लीट, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी। तो सुनिए आर जे गीत के साथ रिश्तों का पॉडकास्ट, जहाँ हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्यूएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: यात्रीगण अच्छा ध्यान दे, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
1: 22 हो या 23 हर मिनट को सुनिए कथा रेडियो महारानी के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: पानी पिलाने की, दिल के छुपे जज्बात जगाने की, चंद जज्बातों को महसूस करने के लिए रहिए हमारे साथ। रात बाकी बात बाकी में सपना के साथ।
1: मेरी जान की
2: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
3: अरे आगे भी बोलना।
2: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो में धार मिलोगे।
4: इतना ही कोई महारानी द्वारा जन्म जीतने का।

0: Johnny, Johnny?
1: Yes, Papa.
0: Bike चलाना है?
1: Yes, Papa.
0: मैंने पहनना है.
1: Okay, Papa.
0: Bike सीट पे गाड़ी चलाओगे?
1: No, Papa.
0: You are very good, बच्चा.
1: Bike सीट में गाड़ी चलाने से बड़ा है दूरी.
0: आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी.
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में चल रही है.
3: कबीरा मिले चमकीले दिन और हर साल ये बिहार जाता है. ये संगीत चरण है आज नहीं न्यू ईयर है. पुरानी मुस्कान साथ रखिए नए सपनों के लिए जगह छोड़िए. वेलकम न्यू ईयर 2020.

0: नींद छोड़ने का मन नहीं, लेकिन लाइन भी तो धीमी है,
1: उठने का दिल नहीं करता, पर दोस्त की आंखें भी तो अच्छी आके घूटती है।
0: पर टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ द मॉर्निंग एक्सप्रेस है जो आपकी सुबह का लोडिंग बार 100% पहुँचाएगा।
1: तो बिस्तर की सुविधाओं का चेक करो, वीडियो का वॉल्यूम बढ़ाओ और एनर्जी का गियर बदल कर दिन की शुरुआत करो, क्योंकि एक परफेक्ट सुबह का स्टेशन एक ही है, रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अलूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी।

0: 69.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: चलो करें कुछ मजा।
2: नया घर लेना मतलब नए सपने, नई उम्मीदें और कभी कभी नए मेहमान। एक नया घर लेना लाइफ का बड़ा अचीवमेंट होता है, पर जब घर के साथ एक भूत मुफ्त मिले तो
3: भूत हो, भूतनाथ नहीं, ये मेरा घर है, चलो निकलो यहाँ।
2: शर्मा फैमिली गोवा शिफ्ट होती है और एक हेरिटेज लुक वाला बंगलो रेंट करती है, नाथ विला। भाई नाम ही इतना क्लासी है तो भूत भी वीआईपी होगा। मोहल्ले वाले वॉर्न करते हैं, भाई हॉन्टेड है, पर इंडियन पेरेंट्स को सिर्फ 2 महीने का रेंट दिख रहा होता है। घर में अजीब चीजें होने लगती हैं, टीवी खुद चलना बंद, फ्रिज से आइसक्रीम गायब, मतलब भाई भूत भी फुल सेवेज मूड में है। पर छोटा बंकू भूत से दोस्ती कर लेता है। भूतनाथ अंकल भी सोच रहे होंगे, अरे यार ये डर क्यों नहीं रहा,
4: कान्हा भूत हूँ।
5: कान्हा भूत नहीं होते, अच्छा तुम यहाँ पर रहने आए हो।
2: धीरे धीरे पता लगता है कि नाथ साहब ही इस घर के असली मालिक हैं और यहीं अटक गए हैं। ईएमआई का लोन चुकाना पड़ा होता तो पहले ही स्वर्ग सिधार जाते। अब बंकू की मिशन मोड एंट्री होती है, भूत को फ्री करना है। एक तरफ स्कूल का होमवर्क और दूसरी तरफ भूत की मोक्ष यात्रा। बचपन काफी स्ट्रेस में चल रहा था, आखिरकार नाथ अंकल स्वर्ग एक्सप्रेस पकड़ के निकल लेते हैं और घर अब हॉन्टेड नहीं रहा। लेकिन शर्मा जी की टेंशन खत्म नहीं हुई, अब उनको नया टेनेंट ढूंढना है। घर सस्ता मिले तो एक बार चेक कर लो, कहीं घर के साथ भूत मुफ्त ना मिल रहा हो, क्योंकि हर भूत भूतनाथ नहीं होता।
1: मेरे

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आयशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो आयशा, तुम सारा होगा कोई।
3: Ladies and gentlemen, you are not

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

गाना तो काफी अच्छा था, बट अभी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो थोड़ी सी सीरियस है, क्योंकि हम लोगों को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। एंड जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी रिसेंटली संडे को हम सबको पता है कि दिल्ली में सत्य निकेतन में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई, पीजी बताई जा रही है, और बहुत सारे बच्चे उसके नीचे दब गए थे। एक वीडियो भी आई जिसमें एक बच्चा अंदर से मलबे के अंदर से उसने वीडियो बना के भेजी थी, लाइक वो पूरी तरह से फंसा पड़ा था, उसने वीडियो बनाकर अपने भाई को भेजी और फिर भाई ने कंसर्न अथॉरिटीज़ को दिखाई वो वीडियो और फिर उसको ट्रेस किया गया। बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब MCD ने उस बिल्डिंग को नॉट सेफ घोषित कर दिया था और फिर उसके बाद मालिक को शायद रेगुलर चेकिंग करनी चाहिए थी कि बिल्डिंग में अभी भी स्ट्रेंथ बची है या नहीं, एंड उसमें काम चल रहा था, बेसमेंट में काम चल रहा था, तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि 50 साल पुरानी बिल्डिंग थी और फिर उसके ऊपर, मतलब चलिए अब तो खैर कार्रवाई होगी जो होगी, बट क्या इन चीज़ों को पहले से नहीं देख लेना चाहिए था? क्योंकि हम लोगों के अंदर भी ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर हम लोग कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, हम लोग अगर अपना एक होटल रन कर रहे हैं, एक PG रन कर रहे हैं, तो हम लोगों को सबकी सेफ्टी का ध्यान देना पड़ेगा। ये एक आम इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक अगर हमारे घर में कहीं पर दरारें आ रही है तो हम लोगों को उसको चेक करवाना पड़ेगा, अगर हमारा PG चल रहा है तो हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे चेकिंग करवानी पड़ेगी। और ऐसा ही एक किस्सा लास्ट ईयर देखने को मिला था, लास्ट ईयर भी नहीं, इसी साल देखने को मिला था, जब दिल्ली में एक होटल में आग लग गई थी। तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ, अगर हम लोग कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसमें सबकी सेफ्टी का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, भले ही हमारे वो एम्प्लॉयज़ हों या फिर हमारे वो कस्टमर्स हों। तो मेरी ये सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान दिया कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 FM सुनते जाइए, ज़्यादा सीरियस बातें नहीं करूँगा, अच्छे अच्छे गाने चलाऊँगा आप लोगों के लिए। तो ये गाना आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर।

The fashion icon, swag on fleek. Bollywood वालों को swag सिखा दूँ. Brand जो पहनूँ उसकी sale बढ़ा दूँ. मेरे बारे तुझे दुनिया बताएगी. खेलना तू चाहती है तो खेल खिला दूँ.

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

0: एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ और वो दिल से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या आज तक वंदे भारत में ट्रैवल किया? अगर नहीं किया तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं और बात कर रहा हूं मैं वंदे भारत की। और वंदे भारत की बात आज इसलिए भी हो रही है क्योंकि देखो यार, एक ऐसी ट्रेन जो इंडिया में चली है बहुत टाइम बाद, आ तो बहुत पहले जानी चाहिए थी, बट स्टिल कोई नहीं, जब भी आई कहते ना देर आए दुरुस्त आए। और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ रही थी जब मैं इसमें बैठा था लास्ट टाइम। दिल्ली से अमृतसर चलती है, अमृतसर से दिल्ली वापस आती है और दिल्ली से बनारस भी जाती है। तो आप लोग बहुत सारे रूट से ट्रैवल कर सकते हैं और सबसे नियरेस्ट रूट तो मैं बताऊँ आपको दिल्ली से अमृतसर है क्योंकि बहुत पास है, मतलब आपको 5 घंटे में अमृतसर पहुँचा देंगे यहाँ से। एक्चुअली मैं अभी मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वंदे भारत स्लीपर, जिसे कवच भी कहा गया है, ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई गई है। इसमें 16 कोच थे, अभी सिर्फ ट्रायल रन था इसका। वंदे भारत स्लीपर है ये और ये बड़े बड़े जो है ना, जैसे बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, जैसे दिल्ली से मान लेते हैं अहमदाबाद जाना है हम लोगों को, तो बैठे बैठे तो जा नहीं सकते ना, स्लीपर जाएगी वहाँ पर। तो सोचिए वंदे भारत जब स्लीपर जाएगी, उसका ट्रायल रन हो रहा था और कितनी स्पीड में वो भाग सकती है, ये रन हो रहा था। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी, निजामुद्दीन से निकली थी और पहुंची थी पलवल पे। और पता आपको कितना टाइम लिया? सिर्फ और सिर्फ मात्र 40 मिनट। अपने फरीदाबाद से होते हुए गई थी। अगर हो सकता है कि आप लोगों ने भी देखा हो, नीलम पुल पे आप लोग हो, आपने नीचे से जाते हुए देखी हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। चलिए ये तो थी एक अचीवमेंट इंडिया द्वारा और मैं बोलूंगा बस आने वाले टाइम में ऐसे ही ट्रेन और भी आती रहेंगी, बट हम लोगों को अपना सिविक सेंस संभाल करना पड़ेगा। फिलहाल दिल्ली से कहाँ जा सकते हैं तो सुनिए इस गाने को, पता लग जाएगा कहाँ जा सकते हैं।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। अभी मैं बात करना चाहता हूँ सिविक सेंस के बारे में। सिविक सेंस और कॉमन सेंस, ये दोनों चीजें ना बहुत कम देखने को मिलती है लोगों के अंदर। हम बोलते हैं ना, अरे ये तो कॉमन सेंस है। नहीं है कॉमन सेंस, लोगों में कॉमन सेंस होता था तो सिविक सेंस भी लोगों के अंदर आ ही जाता। खैर, मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जिसमें शहर में पेंटिंग की जाती है जगह जगह पर, और फिर उसके अलावा बहुत सारे सौंदर्यकरण वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि गमले लगा दिए जाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है, और भी बहुत सारे ABC प्रोग्राम्स होते हैं। तो मैं भी बात करना चाहता हूँ सिविक सेंस की, क्योंकि शहर की खूबसूरती अगर हो, उस पर दाग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अब लोग बोलेंगे चांद पे भी तो दाग है, चांद तो खूबसूरत लगता है। लगता है, वो दूर से खूबसूरत लगता है, शायद पास जाके आपको उतना खूबसूरत नहीं लगेगा। एक्चुअली मैं बात करना चाहता हूँ उस चीज़ की, सेक्टर 15 की मार्केट हो या फिर NIT 1 की, आप किसी भी मार्केट में पहुँच जाओ और फिर उसके बाद वहाँ पर देखो, अगर मान लेते कुछ नया फुटपाथ बना है, रेलिंग्स लगी है, इतने में आपकी नज़रें पड़ेगी रेलिंग्स पर तो दिखाई देगा आपको लाल लाल निशान, किस चीज़ का? लोग गुटखा खा के थूक देते हैं। तो यही सिविक सेंस की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर डस्टबिन लगे होते हैं तो रातों रात डस्टबिन गायब हो जाते हैं। अब हम लोग बोलेंगे हमने तो ना चुराए हैं, बिल्कुल हमने नहीं चुराए हैं, बट अगर हमारे सामने कोई इंसान उसको तोड़ रहा है, तबाह कर रहा है, तो उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए। अगर ये भी नहीं हो सकता तो जाके उसको समझाइए कि प्लीज़ ऐसा ना करें जनाब, ना करें, क्योंकि ये हमारा ही टैक्स का पैसा है। अगर आप लोगों ने कभी टैक्स नहीं भरा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कभी भरा ही नहीं है, आप भी भरते हो दूसरे फॉर्म में। हाँ, जब चीज़ें खरीदते हो टैक्स तो भरती हो ना उस चीज़ में, तो इसके बारे में ज़रा ध्यान दीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए ढेर सारे गाने बजते रहेंगे, उन्हीं में से ये गाना आप सभी के लिए, रेडियो महारानी 89.6।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: सुनना सुनना,
3: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
4: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है। अरे
5: दिस इज द सोशल।

आज मैंने अपने शो के शुरुआत में ही कह दिया था कि आसमान में थोड़ी सी खुशबू है फेस्टिव सीजन की, क्योंकि खुशबू तो है और साथ में ओस भी पड़ रही है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। फेस्टिव सीजन आता है ना, फिर उसके साथ साथ मुझे एक चीज याद आ जाती है कि सर्दियां भी आने वाली है, एंड सर्दियां आने वाली है तो फिर एक और चीज आने वाली है, उसको कहते हैं पॉल्यूशन। भगवान न करे साल आए, बट आप सभी को बता दूं ये जो पॉल्यूशन है इसमें PM2.5 का लेवल नापा जाता है, AQI हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली NCR का मॉडरेट में बना हुआ है, मतलब 100 के आसपास है, 100 से कम ही है फिलहाल तो। बट द थिंग इज, अब एक नई रिसर्च हुई है, मतलब अब एक नई रिसर्च हुई है, उसमें पता लगा है कि ये सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों को ख़राब नहीं कर रहा है, ये फेफड़ों के साथ साथ किडनी को भी ख़राब कर रहा है। अब ये जो नई रिसर्च हुई है ये हुई है दिल्ली वर्सेस चेन्नई के लोगों में, और पता लगा कि ये जो PM2.5 का लेवल है इसमें बहुत सारे और भी पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, उनकी वजह से हार्ट में भी फ़र्क पड़ता है, किडनी में भी फ़र्क पड़ता है और फेफड़ों में भी फ़र्क पड़ता है। तो फेफड़े तो हम लोगों को पता ही था, हार्ट भी हम लोगों को पता ही था, बट अब किडनी पर भी असर पड़ने लग गया है, एंड भगवान न करे कभी भी किसी को किडनी की बीमारी हो, बस मैं यही प्रे करता हूँ भगवान से। एंड बस ये बोलना चाहूँगा कि इस सर्दी अपने घर के अंदर होममेड जो प्लांट, होममेड नहीं माफ कीजिए, जो इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, वो ज़रूर लगाइएगा अपने घर के अंदर, ताकि घर के अंदर की जो हवा है ना वो साफ सुथरी रहे। और अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए अच्छे अच्छे गाने चलाऊंगा, और ये गाना आप सभी के लिए, मैं हूँ गौरव आपके साथ।

और अब सिनेमा का कैप्सूल की एक ऐसी बात जिसको सुनकर बॉलीवुड फैंस कहेंगे ओहो ये कॉम्बिनेशन तो इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं हैवान की। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एक तरफ अक्षय कुमार दूसरी तरफ सैफ, और दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर प्रियदर्शन। मतलब नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। अक्षय और सैफ को साथ देखना अपने आप में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि दोनों ही अपनी अलग अलग स्क्रीन पर्सनैलिटीज, एक तरफ अक्षय की एनर्जी और दूसरी तरफ सैफ का बिल्कुल अलग एक्टिंग स्टाइल और ऊपर से प्रियदर्शन। तो उम्मीद तो यही है कि फिल्म में कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। फिल्म को लेकर अभी से बस बनना शुरू हो गया है और फैंस खास तौर पर इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि इतने सालों बाद ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर कैसा जादू करेगा। तो जब बॉलीवुड में अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, तब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। अब हैवान कितनी बड़ी धमाल मचाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस फिल्म पर नजर रखनी तो पड़ेगी। बॉस मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल सिर्फ रेडियो महारानी पर।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: सपने में किसी अपने को रोते हुए देखा है? हो सकता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है वो आपकी बहन हो सकता है वो आपका भाई हो, कोई भी।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 99.6 पर। वक्त हो चुका है नाइटमेयर्स का, यानी कि सपनों को डीकोड करने का। एंड ऐसा भी होता है, देखो सपनों में जो भी चीज़ हम देखते हैं ना, उसका कोई ना कोई मतलब हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना बात करी जाए सपने में अपने किसी को रोते हुए देखना, किसी अपने को रोते हुए देखना। इसका बहुत सारे मतलब होते हैं। देखो, हो सकता है कि आपकी चिंता है, मतलब आपके अंदर चिंता है। ये सपना अक्सर ये बताता है कि आपके अंदर से आपको उनकी हेल्थ या फिर करियर या फिर पर्सनल लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी दिखाता है ये, मतलब अगर आप देख रहे हो कि आपका कोई चाहने वाला या फिर आपका कोई साथी है वो सपने में रो रहा है, तो हो सकता है आप उस इंसान से इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और उनका दुख सुख आपको असर करता है, और हो सकता है कि कुछ अच्छा बदलाव आने वाला है। देखो, पुरानी मान्यताओं के अनुसार सपने में किसी को रोते हुए देखना ना रियल लाइफ में उनकी कोई परेशानी खत्म होने या फिर उन्हें कोई खुशी मिलने का संकेत भी हो सकता है। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई, और कैसे रो रहे थे, कब रो रहे थे, इन सब चीज़ों में मैं जाऊँगा नहीं। बट द पॉइंट इज, जब भी मैं सपनों की बात करता हूँ और सपनों को डीकोड करने की बात करता हूँ ना, तो उसका मतलब हमेशा ये होता है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो वो होगा ही होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और एक और चीज़ मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि जो गूगल के जो फाउंडर है ना, उनको ये आइडिया सपने में ही आया था। तो सोचिए, आप लोग भी अपने सपने जो देखते हैं ना, वो बहुत कुछ कहते हैं। उन सपनों को नोट डाउन ज़रूर किया कीजिए, ताकि आप लोग भी कल को किसी बड़े स्टार्टअप का फाउंडर बन जाए शायद। चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी। अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए एक गाना चला रहा हूँ, सुनिए इस गाने को। मैं हूँ गौरव आपके साथ, एंड आप सुन रहे हैं शो HR 896।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट वॉट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बचपन में खेलने गए हो कहीं पर और वहां पर बहुत सारे अंकल लोगों ने आपको लोगों को पकड़ लिया और बोला नहीं बेटा यहाँ नहीं खेलते, बताओ अपने पापा का नंबर बताओ, हम उन्हें कंप्लेंट करते हैं फोन करके। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और ये वही अंकल होते हैं जो फिर बाद में बैठ के यही डिस्कस करते हैं पार्क में कि इंडिया ना मेडल नहीं लेकर आ रहा है, इंडिया की बस की कुछ नहीं है, इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं फिर ये पार्क में बैठ के। और फिर वहां पर अगर कोई बच्चा खेल रहा हो उसको रोकेंगे, बेटा ये खेलने की जगह है कोई, पार्क में नहीं खेला जाता। अरे यार ये चीज समझ नहीं आती मुझे, हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है कि सोसाइटी में बच्चों को खेलने की जगह ही नहीं मिलती। क्रिकेट खेलना चाहे बच्चा तो उसको एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है, ग्राउंड्स तो बचे ही नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर बचे हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई बच्चा पार्क में जाके खेलने की कोशिश भी करे, वो बिल्कुल ऐसी गेम खेलेगा वो जिसमें किसी को नुकसान नहीं हो रहा, बट फिर भी वहाँ पर कुछ अंकल आंटी होते हैं जो कहते हैं नहीं बेटा ये सब नहीं करना है आपको, आप अच्छे बच्चे हो, अच्छे घर के बच्चे। अरे अच्छे घर के बच्चों से मतलब क्या है? बच्चा स्पोर्ट्स भी ना खेलेगा। एंड फिर उसके बाद वही अंकल आंटियाँ यही डिस्कस करते हैं कि हाँ इंडिया मेडल्स नहीं लाता। तो मुझे ऐसा लगता है देखो बच्चों को खेलने देना चाहिए। और एक जो फ्रेज था बचपन से हम लोगों को जो सुनाया जा रहा था वो तो वही था ना, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे रवा। पता नहीं किसने बनाया था ये फ्रेज, मैं सच में उस इंसान को आज ढूंढता हूँ, क्योंकि आज की डेट में जो खेल कूद कर रहा है वो सच में नवाब बन रहा है। नीरज चोपड़ा हो या फिर शुभमन गिल हो, किसी का भी नाम उठा लो, कोई ना कोई नवाब आपको जरूर मिल जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए बच्चों को खेलने दीजिए और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी पर आप लोग गाने को एंजॉय कीजिए। मैं हूँ गौरव आपके साथ, आप शो सुन रहे हैं HR 896।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

नामक सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

एक ऐसी मूवी जिसने तबाही मचा दी है सारे सिनेमा थिएटर्स में, और उस मूवी का नाम है हनुमान अंश। 6,006% का प्रॉफिट कमा लिया है आज तक। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव आप सभी के साथ। और टोटल 32 दिन हो चुके, 122 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शन हो चुकी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 करोड़ में ये फिल्म बनी थी। 6,006% का प्रॉफिट दे दिया है सिर्फ और सिर्फ 31 दिनों में रिलीज के बाद। और फिर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं फिल्म बनाने के दौरान, क्या क्या चीज़ें हुई जो कि चमत्कार से कम नहीं थी। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आई कि 2 करोड़ के बजट के अंदर ये फिल्म बनाई गई है। जो एक्टर्स थे उनको कोई खास फैसिलिटीज़ नहीं दी गई थी, उनको ट्रेन की टिकट दी गई थी, उनको प्लेन से भी नहीं जाना दिया था क्योंकि बजट ही नहीं था। और फिर इसके बाद जैसे ही प्रोड्यूसर सामने आती हैं, प्रोड्यूसर 21 साल की हैं कुल, और वो सामने आई और उन्होंने बोला कि बाबा ने हमें इतना कुछ दे दिया, अब हमारी बारी है। तो पार्ट 2 पक्का कंफर्म हो चुकी है। तो अभी नीम करौली बाबा, जो जिनको नीम करौली बाबा भी कहते हैं, उनके ऊपर ये जो फिल्म थी आधारित हनुमान अंश, इसका सेकंड पार्ट भी कंफर्म हो गया है। सीक्वल मींस आगे क्या होने वाला है इस फिल्म में, ये सब चीज़ भी कंफर्म हो चुकी है। और एक और चीज़, सबसे पहली चीज़ जो डायरेक्टर्स खुद क्लैरिफाई करते फिर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अगली मूवी में इस चीज़ को शायद ज़रूर डालेंगे, बट उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि बाबा ने कभी भी चमत्कार पे विश्वास नहीं किया। उन्होंने बोला कि हाँ आप लोग विश्वास रखो उस सुप्रीम गॉड पे एंड अपने कर्म करते चलो। तो ये चीज़ मैं सभी को समझा देना चाहता हूँ कि हाँ आप लोगों को भी कर्म करने पड़ेंगे, बिना कर्म किए तो कुछ भी नहीं मिलता। अब हम रोटी के लिए आटा गूंथेंगे तभी तो रोटी बनेगी ना, ऐसा तो है नहीं ना अपने आप रोटी बन जाएगी। तो सोचिए इसके बारे में, और हाँ अपना विश्वास अटूट रखिए चाहे आप जिनको भी मानते हो। एंड हनुमान अंश अगर अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देख कर आइए, अभी भी सिनेमा थिएटर्स पर लगी हुई है। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए ये वाला गाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब 22 सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर भाई साहब, करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं, आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग, नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूं गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

0: अब थोड़ा हटके चलते हैं क्योंकि ये वाली फिल्म ना टिपिकल बॉलीवुड वाली लग नहीं रही है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लेकर आ रहे हैं द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, और इसका कंसेप्ट सुनते ही क्यूरियोसिटी हो जाती है। मतलब एक रहस्य है, फोकलोर है, माइथोलॉजी वाली वाइब है, और एक ऐसी दुनिया है जहाँ शायद हर चीज वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है। और ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम अक्सर एक्शन, रोमांस और फैमिली ड्रामा देखते हैं, लेकिन ये फिल्म थोड़ा सा अलग रास्ता पकड़ती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थ और तमन्ना की पेयरिंग भी काफी फ्रेश है। फिल्म का पूरा सेटअप मिस्ट्री है और फैंटेसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात ये भी है कि मेकर्स ने फिल्म के क्लाइमेक्स पर एक्स्ट्रा काम किया है ताकि एंड बिल्कुल सॉलिड और इम्पैक्टफुल लगे। तो अगर आपको वो वाली मूवीज पसंद है जहां जंगल सिर्फ जंगल नहीं होता, उसके पीछे कोई कहानी छुपी होती है, तो द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। वैसे नाम भी कितना इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं आपके साथ गीत हूँ, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल रेडियो महारानी पर।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

क्या हुआ अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक ऐसी भी गाड़ी आई है जिसमें ना तो एक्सेलरेटर है, ना तो ब्रेक है, जिसमें ना तो नहीं ब्रेक वैसे है बट ब्रेक का पैडल नहीं है और स्टीयरिंग भी नहीं है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। और जो भी मैंने बात बोली ये 100% सच है। टेस्ला ने रिसेंटली ड्राइवरलेस साइबर कैब निकाल दी है जिसको रोबो टैक्सी सर्विस भी कहा जा रहा है। कुछ पेइंग कस्टमर्स के लिए है जो पहले से ही पैसे दे रखा है जिन्होंने, उन लोगों के लिए साइबर टैक्सी निकाली है, मतलब बिना इंसान की टैक्सी। इसमें ना तो एक्सेलरेटर पैडल है, ना ही ब्रेक का पैडल है, ना ही स्टीयरिंग है। आप आगे बैठ जाइए बस और लोकेशन डालिए, वहाँ तक ये गाड़ी आपको ले जाएगी। स्पीड वगैरह सब कुछ ये खुद से कंट्रोल कर लेगी। और फिर उसके साथ साथ बता दूँ आपको, इसमें रेयर व्यू मिरर भी नहीं है, तो फिर सोचिए एंग्जाइटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। खैर मैं आपको बता दूँ, अभी सिर्फ 45 गाड़ियाँ निकाली है और इसको कमर्शली लागू कर दिया है ऑस्टिन टेक्सास में। US में ये चल रही है। और यहाँ पर एक चीज़ जो सवाल मेरे मन में आ रहा है वो यही है कि क्या AI सच में ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग उसको एक इमेज बनाने के लिए बोले। अगर मैं बोलूँ मुझे शर्ट पैंट में खड़ा कर दो, वो शर्ट पैंट मेरे पैरों के नीचे रख देगा और मेरे को उसके ऊपर खड़ा कर देगा। तो AI के ऊपर इतना विश्वास करना सही है क्या? मुझे तो नहीं लगता। बट यहाँ पर ये जो टेस्ला वाली कंपनी है ना, जिनके CEO इलोन मस्क, तो ये बंदा कुछ अलग ही सोचता है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो टीम तो अच्छी होगी और अभी सिर्फ 45 गाड़ियां निकाली और वो भी ऑस्टिन टेक्सास में, कुछ कुछ हिस्सों में ये गाड़ी चलाई है। अब धीरे धीरे ये मुझे लगता है US में भी चला देंगे और फिर धीरे धीरे कोई ना कोई स्टार्टअप तो इंडिया में भी ज़रूर आएगा जो इस चीज़ को इंडिया में भी चालू कर देगा। बट द थिंग इज, क्या इंडिया में ये चल पाएगी? व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो नहीं लगता चल पाएगी, बट सबकी अपनी अपनी डिफरेंट राय होती है। तो आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मगर उससे पहले आप

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।
2: तुम जितनी कोशिश कर लो होगा कोई।
3: Ladies and gentlemen, you are not

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

कल भी बारिश नहीं हुई, आज भी कोई चांस नहीं था, और फिर इसके साथ साथ आने वाले दो दिन में भी कोई चांस नहीं है। रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। जैसा लास्ट वीक गया था, लास्ट वीक का फ्राइडे, सैटरडे और संडे, संडे की शाम को एक्सक्लूड कर देते हैं, बाकी तीन दिन, ढाई दिन मान लेते, क्योंकि ढाई दिन बहुत ज़्यादा अच्छे गए थे। मौसम बड़ा ही ऑसम हो गया था, थर्सडे को भी हल्की फुल्की बौछार देखने को मिली थी, फ्राइडे को तो मौसम अमेजिंग ही था, और फिर उसके बाद सैटरडे को भी अच्छा अच्छा मौसम था, मगर संडे की दिन तक तो ठीक ठाक बादल थे। खैर, अब ये तो हो गई पिछले हफ्ते की बात, और इस हफ्ते की मैंने बात कल भी करी थी, आज भी करूंगा, और आज यही है कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री का था, बट इट वॉज फीलिंग एज ए 42 डिग्री सेल्सियस, एंड ह्यूमिडिटी की अगर बात करें वो 63% के अराउंड ह्यूमिडिटी थी पूरे दिन भर, और एयर क्वालिटी अभी ठीक है, मॉडरेट के आसपास है, मतलब 100 के आसपास चल रही है एयर क्वालिटी। अब यहाँ पर मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि जो एयर क्वालिटी है ना, ये अभी बहुत साफ है। अब आप लोगों को लग रहा होगा 111, 110, 100 ऐसे ऐसे क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हवा में नमी है, और जब नमी रहती है तो उस नमी के साथ पॉल्यूशन के जो कण है, जो पार्टिकल्स है, वो स्टेबल हो जाते हैं, वो थोड़े से हैवियर हो जाते हैं, और फिर उसकी वजह से थोड़ा सा पोल्यूशन ज़्यादा शो करता है। बस इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पोल्यूशन अभी कम है, तो उसको एन्जॉय कीजिए, मौसम साफ है उसको एन्जॉय कीजिए, और अभी रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसे ही ढेरों अपडेट्स लेकर आते रहूँगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सुबह सुबह उठिए और अपनी खुली हवा में, छत पे जाइए या फिर पार्क में जाइए और खुली हवा में योगा कीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट मौसम और इससे बेस्ट हवा आपको शायद पूरे साल में अभी नहीं मिलने वाली। चलिए सुनिए इस गाने को, रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना था मन भी है, मिले जे कोई चाहता है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट वॉट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबूशोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

आपके ग्रुप में भी एक ऐसा इंसान होगा जिससे कभी भी पूछ लो क्या हाल है, वो बोलेगा बस भाई बढ़िया है, बस जिम से आ रहा हूँ, या फिर ये बोलेगा कि बस भाई बढ़िया है जिम जा रहा हूँ। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर। वक्त हो चुका है क्या हाल है का, और अभी क्या हाल है मैं आज हम लोग बात कर रहे हैं उस इंसान की जो जिम का फ्रीक है, जिम जाना बहुत उसको अच्छा लगता है। उससे कभी पूछ लो क्या हाल है, बोलेगा भाई बढ़िया, बस कल लेग्स मारी थी, आज टॉयलेट तक जाना हिमालय एक्सपेडिशन लग रहा है। कहता ठीक हूँ, बस प्रोटीन पूरा करने के चक्कर में चिकन और पनीर मुझे फैमिली समझने लगी है, नॉन वेज नहीं खाता मैं, देखो मैं अपनी बात नहीं कर रहा था यहाँ पर। और किसी से पूछो क्या हाल है, वो बोलेगा क्या हाल है, वेट तो सेम है लेकिन मिरर के सामने कॉन्फिडेंस 10 किलो बढ़ गया है, क्योंकि इंसान ना जब जिम जाने लगता है फिर उसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। और इंसान ये भी कहता है भाई जिम फ्रीक हूँ, खाना देखने से पहले कैलोरीज पूछता हूँ। और ये ऐसे प्रजाति के लोग, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कभी कभार ना गुस्सा भी आने लग जाता है इन लोगों पर, बट द थिंग इज दे आर टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। इनसे पूछो क्या हाल है, वो बोलेंगे आज रेस्ट डे है लेकिन गिल्ट वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि एक दिन छुट्टी भी मिल जाती ना उस दिन ऐसा लगता है अरे नहीं यार कुछ तो मिसिंग है। और किसी से पूछो क्या हाल है, बोलेगा बॉडी सोर है, एनर्जी लो है, पर जिम का सेल्फी एंगल एकदम परफेक्ट है, चीट मील खा लिया, अब अगले 3 दिन ट्रेडमिल मुझे देख के खुश होगी। हाँ एक और चीज़, जो भी ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं ना, तो मैं बताऊंगा आपको एक कंफर्टेबल शूज़ ले लीजिएगा। और इसके अलावा किसी भी जिम फ्रीक से पूछो क्या हाल है, वो बोलेगा नॉर्मल लोग मंडे को ऑफिस जाते हैं, जिम फ्रीक मंडे को चेस्ट डे का फेस्टिवल समझते हैं। ये तो सच्चाई है। तो ये था आज का क्या हाल है एडिशन, जिम फ्रीक एडिशन बोल सकते हैं। और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए चलेंगे खूब सारे गाने, उन्हीं में से ये गाना आप सभी के लिए रेडियो महारानी।

और अब सिनेमा का कैप्सूल की एक ऐसी बात जिसको सुनकर बॉलीवुड फैंस कहेंगे ओहो ये कॉम्बिनेशन तो इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं हैवान की। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एक तरफ अक्षय कुमार दूसरी तरफ सैफ और दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर प्रियदर्शन। मतलब नाम सुनते ही क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। अक्षय और सैफ को साथ देखना अपने आप में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि दोनों ही अपनी अलग अलग स्क्रीन पर्सनैलिटीज है। एक तरफ अक्षय की एनर्जी और दूसरी तरफ सैफ का बिल्कुल अलग एक्टिंग स्टाइल और ऊपर से प्रियदर्शन। तो उम्मीद तो यही है कि फिल्म में कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। फिल्म को लेकर अभी से बस बनना शुरू हो गया है और फैंस खास तौर पर इस बात को लेकर एक्साइटेड हैं कि इतने सालों बाद ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन पर कैसा जादू करेगा। तो जब बॉलीवुड में अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना तब ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। अब हैवान कितनी बड़ी धमाल मचाती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस फिल्म पर नजर रखनी तो पड़ेगी। बॉस मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल सिर्फ रेडियो महारानी पर।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

क्या आपको पता है कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि हॉलीवुड से कॉपी किए गए हैं? एक नहीं, दो नहीं, सीरियसली बहुत सारे गाने, और मैं सोचता हूँ व्हाई। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव आप सभी के साथ एंड रेडियो महारानी 89.6 पर। वक्त हो चुका है म्यूजिक को डीकोड करने का, मगर उसी के साथ साथ आज बात कर रहे हैं हॉलीवुड के कुछ गाने जो कि बॉलीवुड में लिए गए और बहुत ज्यादा मतलब पॉपुलर हो गए थे। जुर्म मूवी का गाना, जब कोई बात बिगड़ जाए, ये गाना एक्चुअली में 500 माइल्स था और पीटर पॉल एंड मैरी का। एंड इसी के साथ साथ चुरा लिया है तुमने जो दिल को, याद है ये गाना? तो ये भी गाना चूज किया गया था एक ऐसी फिल्म से जिसका ओरिजिनल इंग्लिश गाना था इफ इट्स ट्यूजडे दिस मस्ट बी बेल्जियम, बोजोरा मतलब एक बेल्जियम उन्हीं की लैंग्वेज में होगा। और इसके अलावा महबूबा महबूबा ऐसी से यू लव मी, ये गाना था। और इनके अलावा अकेले हैं तो क्या गम है, याद है ना ये लाइन? रिटर्न टू दी अलामो द शेडोज का ये गाना था। एक गाना बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके। ये गाना फिल्म परिंदा में था, मगर ये भी कॉपी किया गया था व्हेन आई नीड यू से। अब सोचिए इतने सारे गाने कॉपी किए गए थे, और कल भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से और भी गाने थे जो कॉपी किए गए थे। आज के लिए इतना ही, अभी सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं

0: हटके डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर तनु। आई एम एमडी मेडिसिन डायबिटोलॉजिस्ट। आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 10 इयर्स एंड यस, आई आल्सो रन अ सप्लीमेंट कंपनी। आई एम अ फेलो इन रीजनरेटिव मेडिसिन एंड माय एडवाइस टुडे कम्स फॉर विमेन हु हैव डन देयर फर्स्ट इनिंग एंड नाउ देयर इन देयर सेकेंड इनिंग। पहली इनिंग में मेनार्की, प्रेगनेंसी, बच्चे, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, सो मेनी थिंग्स एंड नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रजाइल फेज ऑफ योर लाइफ वेर आपकी बॉडी में जितनी सारी चीज़ों से आप खूबसूरत लगते थे, आप इतना एक्टिवली काम करते थे, अब वो सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी। अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 चीज़ों पर ध्यान दें। पहली चीज़, हो सकता है कि आप पहले स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट टेक अ गुड मैग्नीशियम सप्लीमेंट एंड ट्राई टू स्लीप बेटर। सेकेंड, प्रोटीन, एज इन हमें बचपन सिखाया गया है कि लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए, बट हम ऑब्वियसली एक 40 साल की ज़िंदगी में, काम में, बच्चों में, बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं वो चीज़ें। अब आपकी उस एज में हो, अब आपकी बॉडी बहुत वियर ऑफ हो चुकी है, यू नीड मोर प्रोटीन देन बिफोर। थर्ड थिंग, अब आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रह सकती। यू हैव टू एक्सेप्ट द स्किन विल ड्राई आउट, योर वेजाइना विल ड्राई आउट, योर बॉडी नीड्स मोर एंड मोर, यू नो, आपको और अच्छी क्रीम्स और अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट फुल ऑफ हाइड्रेशन यूज़ करनी है। फोर्थ, आपको अब एक ब्रेन फॉग, आपको अपना आधी चीज़ें थोड़ी कम याद रहेंगी, अब आप थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे, ये सब पेरीमेनोपॉज में होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर्स, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन टाइम, टेक द मेडिकेशन एज एडवाइज्ड, मीट ऑल योर फ्रेंड्स, कीप यू नो योर सेल्फ अराउंड विद पीपल जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि आप अकेला ना फील करो। इस टाइम पे बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं, बहुत लोग बहुत मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं अपने पार्टनर से, दे आर गोइंग थ्रू अ एरे ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग व्हेन यू आर सिटिंग विद राइट पीपल। पांचवी चीज, यू विल हैव टू रियली रियली टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, बिकॉज अब आपकी जैसा आपका पहले जैसा सुंदर दिखना, आपकी डाइट का चेंज होना, आपको वेट गेन होना, आपको बहुत वेट गेन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी। ये पांचवी चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। मीटिंग अ साइकोलॉजिस्ट, अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी इन योर लिस्ट, बिकॉज राइट नाउ यू आर अर्निंग वेल, यू हैव गुड मनी ऑल्सो, यू हैव गुड लाइफ ऑल्सो, पर ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग। रेडियो महारानी

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेन

0: एक सवाल मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ और वो दिल से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या आज तक वंदे भारत में ट्रैवल किया? अगर नहीं किया तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं और बात कर रहा हूं मैं वंदे भारत की। और वंदे भारत की बात आज इसलिए भी हो रही है क्योंकि देखो यार, एक ऐसी ट्रेन जो इंडिया में चली है बहुत टाइम बाद, आ तो बहुत पहले जानी चाहिए थी, बट स्टिल कोई नहीं, जब भी आई कहते ना देर आए दुरुस्त आए। और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी दौड़ रही थी जब मैं इसमें बैठा था लास्ट टाइम। दिल्ली से अमृतसर चलती है, अमृतसर से दिल्ली वापस आती है और दिल्ली से बनारस भी जाती है, तो आप लोग बहुत सारे रूट से ट्रैवल कर सकते हैं। और सबसे नियरेस्ट रूट तो मैं बताऊँ आपको दिल्ली से अमृतसर है, क्योंकि बहुत पास है, मतलब आपको 5 घंटे में अमृतसर पहुँचा देंगे यहाँ से। एक्चुअली मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वंदे भारत स्लीपर, जिसे कवच भी कहा गया है, ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई गई है। इसमें 16 कोच थे, अभी सिर्फ ट्रायल रन था इसका। वंदे भारत स्लीपर है ये, और ये बड़े बड़े जो है ना, जैसे बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, जैसे दिल्ली से मान लेते हैं अहमदाबाद जाना है हम लोगों को, तो बैठे बैठे तो जा नहीं सकते ना, स्लीपर जाएगी वहाँ पर। तो सोचिए वंदे भारत जब स्लीपर जाएगी, उसका ट्रायल रन हो रहा था और कितनी स्पीड में वो भाग सकती है, ये रन हो रहा था। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी, निजामुद्दीन से निकली थी और पहुंची थी पलवल पे। और पता आपको कितना टाइम लिया? सिर्फ और सिर्फ मात्र 40 मिनट। अपने फरीदाबाद से होते हुए गई थी। अगर हो सकता है कि आप लोगों ने भी देखा हो, नीलम पुल पे आप लोग हो, आपने नीचे से जाते हुए देखी हो सकता है, इज द पॉसिबिलिटी। चलिए ये तो थी एक अचीवमेंट इंडिया द्वारा, और मैं बोलूँगा बस आने वाले टाइम में ऐसे ही ट्रेन और भी आती रहेंगी, बट हम लोगों को अपना सिविक सेंस संभाल कर रखना पड़ेगा। फिलहाल दिल्ली से कहाँ जा सकते हैं तो सुनिए इस गाने को, पता लग जाएगा कहाँ जा सकते हैं।

0: वन बार।
1: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
2: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
3: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
4: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आप लोगों ने सपने में किसी अपने को रोते हुए देखा है? हो सकता है वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है वो आपकी बहन हो सकता है वो आपका भाई हो, कोई भी। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 99.6 पर। वक्त हो चुका है नाइटमेयर्स का, यानी कि सपनों को डीकोड करने का। एंड ऐसा भी होता है, देखो सपनों में जो भी चीज़ हम देखते हैं ना, उसका कोई ना कोई मतलब हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना बात करी जाए सपने में अपने किसी को रोते हुए देखना। किसी अपने को रोते हुए देखना, इसका बहुत सारे मतलब होते हैं। देखो, हो सकता है कि आपकी चिंता है, मतलब आपके अंदर चिंता है। ये सपना अक्सर ये बताता है कि आपके अंदर से आपको उनकी हेल्थ या फिर करियर या फिर पर्सनल लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी दिखाता है ये, मतलब अगर आप देख रहे हो कि आपका कोई चाहने वाला या फिर आपका कोई साथी है वो सपने में रो रहा है, तो हो सकता है आप उस इंसान से इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और उनका दुख सुख आपको असर करता है, और हो सकता है कि कुछ अच्छा बदलाव आने वाला है। देखो, पुरानी मान्यताओं के अनुसार सपने में किसी को रोते हुए देखना ना रियल लाइफ में उनकी कोई परेशानी खत्म होने या फिर उन्हें कोई खुशी मिलने का संकेत भी हो सकता है। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई, और कैसे रो रहे थे, कब रो रहे थे, इन सब चीज़ों में मैं जाऊँगा नहीं। बट द पॉइंट इज, जब भी मैं सपनों की बात करता हूँ और सपनों को डीकोड करने की बात करता हूँ ना, तो उसका मतलब हमेशा ये होता है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो वो होगा ही होगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और एक और चीज़ मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि जो गूगल के जो फाउंडर है ना, उनको ये आइडिया सपने में ही आया था। तो सोचिए, आप लोग भी अपने सपने जो देखते हैं ना, वो बहुत कुछ कहते हैं। उन सपनों को नोट डाउन ज़रूर किया कीजिए, ताकि आप लोग भी कल को किसी बड़े स्टार्टअप का फाउंडर बन जाएं शायद। चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी। अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए एक गाना चला रहा हूँ, सुनिए इस गाने को। मैं हूँ गौरव आपके साथ, एंड आप सुन रहे हैं शो HR 89।

मत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें। तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: हाँ

0: दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी, मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।
2: ना, निवाना।

मुझसे एक इंसान सवाल कर रहा था और वो ये पूछ रहा था कि भाई आजकल बहुत सारी नई नई मशीन्स आ गई हैं जिम में, तो क्या हम लोगों को जिम में मशीन पे ही वर्कआउट करना चाहिए या फिर डंबल वाला वर्कआउट ही बेस्ट वर्कआउट है। तो मैंने उसको एक ऐसा आंसर दिया जो कि उसको बहुत ही ज्यादा लॉजिकल भी लगा। आप सभी के साथ रेडियो महारानी 89.6 पर वक्त हो चुका है जिम ब्रो का, यानी कि आपके लिए जिम टिप्स लेकर आता हूं। एंड ये सवाल आपके मन में भी आया होगा कि क्या हम लोगों को वर्कआउट करते वक्त सिर्फ मशीन्स पे ही वर्कआउट करना चाहिए या फिर हम लोगों को डंबल से वर्कआउट करना चाहिए। तो मैंने ये जवाब दिया कि देखो, जब मशीन्स नहीं थी तब तो सिर्फ वेट हुआ करते थे, हाँ डंबल्स बने थे उस टाइम, और फिर उसके बाद रॉड्स बनी थी, तो ये रॉड और डंबल वाला वर्कआउट ही हुआ करता था। मशीन्स तो अब आई हैं, और जो मशीन्स आई है ना उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि आपका बॉडी वेट और आपका जो वेट आप उठा रहे हैं वो डिसबैलेंस नहीं होगा और मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बन जाएगा। और इसी के साथ साथ मसल माइंड कनेक्शन की जब बात आ ही गई है, तो जितने भी बिगिनर्स हैं, जो लोग चाहते हैं बॉडी बनाना, जो लोग चाहते हैं कि हम भी थोड़ा सा अच्छा दिखें या फिर मसल्स ग्रो करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए एक सिंपल सी टिप है कि आप लोग अगर जिम जा रहे हैं तो मसल माइंड कनेक्शन ज़रूर बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझ नहीं आ रहा मसल माइंड कनेक्शन कैसे बनता है, अगर आप डंबल उठाते हैं, बारबल कर्ल करते हैं, बाइसेप्स की एक्सरसाइज है जो डंबल से करते हैं, मान लेते हैं बारबल भी नहीं, डंबल से करते हैं, डंबल कर्ल्स करते हैं, तो जब आप डंबल नीचे से ऊपर उठाते हैं तो आपका बाइसेप्स पे पंप आता है ना, जो फील होता है उसी को कहते हैं मसल माइंड कनेक्शन, कि आपके माइंड को पता लग रहा है कि हाँ इस मसल पे जोर आ रहा है। तो यही है मसल माइंड कनेक्शन, वो बना के चलिए और आप वर्कआउट करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा। अभी फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए जो है कृष्णा की आवाज में रेडियो महारानी।

रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल।

0: रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: कभी कभी टीवी पे एड्स देखने में ना ऐसा लगता है कि भाई ये सब प्रोडक्ट हमें खरीद लेने चाहिए, फिर टीवी जब लोगों के बीच में नहीं रहा क्योंकि अब सब लोग ऑनलाइन ही चीजें देखते हैं तो फिर अब और कन्विंस हो जाते हैं।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: रेडियो का गौरव है आप सभी के साथ, रेडियो महारानी 89.6 पर। और जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ वो यही है कि टीवी में एड्स आती थी पहले, बचपन में हम लोग नई नई एड्स देखते थे और फिर हम लोग बोलते थे कि नहीं हमें यही प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि उसको इतना एनिमेट करके दिखा देते थे। मुझे ऐसा लगता था कि चीटोस के अंदर से सच में एक वो टाइगर निकलेगा और फिर वो ऐसे डांस करके दिखाएगा, जो भी चीज़ें दिखाते थे टीवी पे। फिर उसके अलावा और भी चीज़ें थी, बॉर्नविटा था, कैल्शियम सैंडोज की एड इतनी दी गई थी कि मैंने खरीद लिया था, फिर मेरे से खाया नहीं गया था वो फिर मार भी बहुत खाई थी मैंने उस चक्कर में। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को इन्फ्लुएंस कर देती है और ऐसे ही अब ये काम कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कुछ भी दिखा देते हैं ऑनलाइन और सच बताऊं तो हम पढ़े लिखे लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम मीन्स आप भी मैं भी सब लोग। और अगर कोई भी इंसान आकर बोल देना कि ये क्रीम लगाओ 10 दिन लगाओ गोरे हो जाओगे, तुरंत लोग खरीदने लग जाएंगे भले ही उसका रिजल्ट कुछ भी ना हो। तो इसके बारे में आप लोग भी जरा सोचिए और मैं भी सोचता हूँ और सोचने के लिए तो पूरी रात है हमारे पास क्योंकि वक्त हो चुका है मेरा यहाँ से जाने का। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से, मिलूंगा आप सभी से फिर से दोबारा कल शाम 5 से 9। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। वापस आएगी गीत विदेशबाजियां, प्यार भरी बातें, प्यार भरे गाने और प्यार भरे नगमे लेकर। ऐसी बातें नहीं करती, वो अच्छी अच्छी बातें करती है। तो सुनिए रेडियो महारानी 89.6 FM, दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: कुछ हटके।
1: सिनेमा का कैप्सूल। तो इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर भाई साहब, करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

रात थोड़ी सी गहरी हो गई है, शहर की आवाजें थोड़ी कम है और शायद इसी वक्त दिल की आवाज थोड़ी ज्यादा साफ सुनाई देती है। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। और इसके सबसे खूबसूरत हिस्से इश्क शायराना में हम आज की रात मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसे शायर से जिनका नाम लेते ही मोहब्बत, उदासी, इंतजार और एक अजीब सी बेवाकी सब एक साथ याद आने लगते हैं। नाम है अहमद फराज। फराज साहब ने बहुत ही कम उम्र में पोइट्री लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने उर्दू और पर्शियन में हायर स्टडीज की और अपने प्रोफेशनल सफर की शुरुआत रेडियो के तौर पर की, यानी आवाज और अल्फाज से उनका रिश्ता सिर्फ एक शायर का नहीं था, वो आवाजों की दुनिया को समझने वाले इंसान भी थे। लेकिन फराज सिर्फ लव पोइट नहीं थे, उनके अंदर एक रिबेलियस आदमी भी था। शायद यही वजह है कि उनकी पोइट्री में मोहब्बत भी सिर्फ फूलों और चांद की कहानी नहीं, उसमें विरोध है, दर्द है, दूरी है, सवाल है और सबसे बड़ी बात अपनी बात कहने की हिम्मत है। और यही चीज मुझे फराज के सबसे करीब लगती है, क्योंकि हम भी तो आजकल दो ही तरह की जिंदगी जीते हैं, एक जो इंस्टाग्राम पर दिखाई देती है और एक जो रात के इस वक्त अपने कमरे में अकेले बैठकर महसूस होती है। फराज उसी दूसरी जिंदगी के शायर हैं, वो उन फीलिंग्स के शायर हैं जिन्हें हम टाइप तो बहुत करते हैं लेकिन सेंड नहीं कर पाते। तो आज की रात थोड़ा वक्त फराज के नाम करते हैं, उनकी मोहब्बत को समझेंगे, उनकी नाराजगी को महसूस करेंगे और शायद उनकी कुछ बातों को भी, और शायद उनकी कुछ बातों में अपनी ही कोई कहानी मिल जाए। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, शो है इश्क बाजियां। और अब इस रात को थोड़ा और खूबसूरत बनाने का वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM. कुछ हटके मैं आपके साथ हूँ, आपकी इश्क वाली गीत शो है इश्क बाजियां, और ये है हमारा सेगमेंट इश्क शायराना. अभी हमने जाना फराज को, उस आदमी को जो सिर्फ मोहब्बत का शायर नहीं था बल्कि अपने समय में बेचैनी को भी अपनी पोएट्री में जगह देता था. लेकिन अब जरा उस फराज के पास चलते हैं जिसे दुनिया ने सबसे ज्यादा प्यार किया, द रोमांटिक फराज. और फराज की मोहब्बत की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उनकी मोहब्बत बहुत परफेक्ट नहीं थी. उसमें आर्ग्यूमेंट्स है, इंतजार है, इनसिक्योरिटी है, दूरी है, ईगो है, और कभी कभी वो एक्सेप्टेंस भी है कि शायद सामने वाला अब आपके साथ नहीं है. यानी बिल्कुल हमारी तरह आज हम रिलेशनशिप में होते हुए भी कितनी ही बार अकेले होते हैं. एक इंसान ऑनलाइन होता है लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल. मैसेज पढ़ लिया जाता है, जवाब नहीं आता है. किसी का सीन पता होता है लेकिन लास्ट फीलिंग नहीं पता होती. और फराज शायद इसी सब ठीक है के पीछे वाली दरारों के पीछे के शायर है. उनकी एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले. अब जरा सोचिए कितना स्ट्रेंज है ना. हम वो लोग हैं जो ब्रेकअप के बाद फोटोग्राफ्स डिलीट करते हैं, चैट आर्काइव करते हैं, अनफॉलो करते हैं, लेकिन मेमोरी को डिलीट करने का कोई बटन नहीं होता. कभी कभी कोई इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है लेकिन आपकी लैंग्वेज में रह जाता है, किसी गाने में, किसी परफ्यूम में, किसी सड़क के मोड़ पर, किसी कैफे की टेबल पर, और सबसे ज्यादा रात के उन दो मिनटों में जब आप खुद से कहते हैं आई एम ओवर इट, और दिल बहुत कामली कहता है रियली. फराज की पोइट्री की यही खूबसूरती है, वो आपको लेक्चर नहीं देती कि प्यार क्या है, वो बस आपकी फीलिंग को नाम दे देती है. और शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी फराज पुराने नहीं लगते, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, रिलेशनशिप के नाम बदल गए हैं, डेटिंग एप्स आ गए हैं, सिचुएशनशिप्स आ गई हैं, लेकिन इंतजार अभी भी वही है. मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM. सेगमेंट है इश्क शायराना, और अब है दिल को थोड़ा और फराज में बनाने का वक्त. है एक म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि कहानी अभी बाकी है.

सिनेमा लवर्स वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 99.6 FM, जहां मैं बात करती हूं उन मूवी शोज और ओटीटी अपडेट्स की जो इन दिनों एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लगातार चर्चा में है। और इस हफ्ते की ओटीटी कन्वर्सेशन में एक नया नाम ऐसा भी है जिसको इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। द ट्रेटर सीजन 2 वापस आ चुका है और इस बार गेम पहले से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है। करण जौहर फिर से साइकोलॉजिकल रियलिटी गेम को होस्ट कर रहे हैं, लेकिन असली अट्रैक्शन वो 21 सेलिब्रिटी प्लेयर्स जो एक पैलेस में एंटर करते हैं, जिसमें से कुछ होंगे इनोसेंट और कुछ होंगे सीक्रेटली चुने हुए ट्रेटर्स। मतलब सामने बैठा इंसान दोस्त है, एले है, या फिर वही आपको गेम से बाहर लाने की पूरी प्लानिंग कर रहा है, ये पता लगाना इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चैलेंज है। सीजन में मलिका शेरावत, मुनव्वर फारूकी, रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी जैसे कई फेमिलियर फेसेस नजर आ रहे हैं और यही सेलिब्रिटी मिक्स शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। लेकिन द ट्रेटर्स की खासियत सिर्फ सेलिब्रिटी फेसेस नहीं है बल्कि इसका पूरा फन ट्रस्ट और बीट्रेल के बीच है। यहाँ लाउडेस्ट प्लेयर जरूरी नहीं कि स्मार्टेस्ट प्लेयर हो, और जो सबसे ज्यादा इनोसेंट दिखाई दे हो सकता है वही सबसे बड़ा ट्रेटर निकले। तो अगर आप रियलिटी टीवी को सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं बल्कि माइंड गेम, स्ट्रेटजी, एलिगेशंस और डिसेप्शन के लिए देखना पसंद करते हैं तो द ट्रेटर सीजन 2 इस हफ्ते आपकी ओटीटी वॉच लिस्ट में जगह बना सकता है। और हाँ, एक और बात, इस गेम में किसी पर जल्दी ट्रस्ट करना शायद आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम को छटके। मैं हूं आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, जहां आज रात इश्क शायराना में हम बात कर रहे हैं अहमद फराज की। अब तक हमने फराज को एक रोमांटिक पोइट की तरह देखा, लेकिन फराज की मोहब्बत सिर्फ आई मिस यू वाली मोहब्बत नहीं है, उनकी पोइट्री में एक बहुत मैच्योर रियलाइजेशन भी है कि कभी कभी हम किसी इंसान को नहीं खोते, हम उसके साथ अपनी बनाई हुई पूरी दुनिया को खो देते हैं। क्योंकि ब्रेकअप के बाद सबसे मुश्किल चीज ये नहीं होती कि वो इंसान चला गया, सबसे मुश्किल होता है उसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे रिचुअल्स भी चले जाते हैं। वो गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस, वो बिना मतलब की कॉल्स, वो घर पहुंचकर बताना, वो किसी पर्टिकुलर जगह से गुजरते हुए अचानक उसका याद आ जाना, और फिर एक दिन आपको रियलाइज होता है कि आप उस इंसान को नहीं, उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ को मिस कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ करता था। फराज की एक और बहुत खूबसूरत लाइन है, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। बस यही तो है, किसी के चले जाने के बाद पता चलता है कि वो सिर्फ एक पर्सन नहीं था, वो आपका रूटीन था, आपकी उम्मीद था, आपकी छोटी छोटी खुशियों का विटनेस था। और शायद इसीलिए कुछ लोग जाते जाते भी नहीं जाते हैं, उनका नाम हमारी कन्वर्सेशन में नहीं आता लेकिन हमारी खामोशी में रह जाता है। और आज के टाइम में जहां हम हर चीज को जल्दी रिप्लेस करने के आदी हो चुके हैं, नया फोन, नई जॉब, नई कैफे, नई रिलेशनशिप, वहां फराज हमें एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ याद दिलाते हैं, कुछ कनेक्शंस रिप्लेस नहीं होते, बस उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। शायद क्लोजर का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ महसूस होना बंद हो जाए, क्लोजर शायद ये है कि एक दिन वही याद रह जाए और आपका दिल टूटे नहीं, बस थोड़ा सा आप मुस्कुरा दो। मैं हूँ आपके साथ इश्क वाली गीत, और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, स्टे ट्यून्ड।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी। मैं आपके साथ हूँ इश्क़वाली गीत। आज की रात हमने अहमद फराज साहब को सिर्फ एक पोइट की तरह नहीं बल्कि एक फीलिंग की तरह समझने की कोशिश की, एक ऐसे पोइट की तरह जिसकी पोइट्री में लव भी है, रिबेलियन भी है और लोनलीनेस भी है, जिसे हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कैरी करते हैं। फराज की पोइट्री की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है, वो आपको सिर्फ किसी और की याद नहीं दिलाते, कभी कभी वो आपको अपने खुद की याद दिलाते हैं, उस इंसान की जो कभी किसी के लिए बहुत खास हुआ करता था, उस रात की जब आपको लगा था कि ये रिश्ता हमेशा चलेगा, उस गुड बाय की जिसे आपने सामने वाले से नहीं शायद खुद से कहा। फराज के यहाँ एक और खूबसूरत बात बार बार आती है, डिस्टेंस। आँख से दूर होना और दिल से उतर जाना दोनों एक बात नहीं है, और हमारे लिए इससे बड़ा रिलेशनशिप लेसन कुछ नहीं है। किसी को रोज देखना लव नहीं है, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई आना लव नहीं है, हर फोटोग्राफ में साथ होना प्यार नहीं है। कभी कभी कोई इंसान हजारों माइल्स दूर होकर भी आपके सबसे करीब होता है, और कभी कभी कोई आपके सामने बैठा होता है लेकिन आप दोनों के बीच इतनी खामोशी होती है कि लगता है जैसे पूरी दुनिया बीच में आ गई हो। वही फराज का मैजिक है, वो लव को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते, वो उसकी कीमत भी जानते हैं, और शायद इसीलिए उनकी पोइट्री आज भी इतनी पर्सनल लगती है, क्योंकि हर किसी के पास एक फराज वाला रिश्ता है, कोई जिसे हमने चाहा, कोई जिसे हमने खोया, कोई जिसे हम आज भी याद करते हैं, या शायद कोई जिसे हम भूल जाने का नाटक करते हैं। तो अगर आज की रात फराज की किसी लाइन ने आपको किसी की याद दिलाई तो उसे तुरंत मैसेज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी किसी को याद करना भी अपने आप में एक पूरा खत होता है जिसे भेजना जरूरी नहीं है। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, ये है रेडियो महारानी, शो है इश्क बाजियां। तो आज की रात हमने की फराज साहब के नाम। अभी वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का, स्टे ट्यून, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि रेट्रो इश्क अभी बाकी है मेरे दोस्त।

कहते हैं ना कि हर मोहब्बत की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ लफ्जों में लिखी जाती हैं और कुछ कहानियाँ वक्त के पन्नों पर अपनी एक अलग ही पहचान बना जाती हैं। कुछ इश्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक मुलाकात से शुरू होते हैं और फिर जिंदगी भर का सफर बन जाता है। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, जहाँ मैं बात करती हूँ उन जज्बातों की, उन एहसासों की और उन कहानियों की, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक पूरा एहसास होती है। और इश्क बाजियां में ये खास सेगमेंट है जिसका नाम है रेट्रो इश्क, एक ऐसा सफर जहाँ हम लौट कर आते हैं पुरानी मोहब्बत की उन कहानियों में, जहाँ इंतजार था, जुनून था और अपने किसी खास इंसान तक पहुंचने की खूबसूरत जिद थी। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है, एक ऐसा इश्क जहां दो लोग अलग अलग देशों से थे, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी जबान अलग थी, लेकिन दिल की एक ही जबान थी, मोहब्बत। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने प्यार तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता नहीं चुना बल्कि एक ऐसा सफर चुना जिसे सुनकर शायद आप भी कहेंगे ये होता है असली इश्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेट्रो इश्क, एक खूबसूरत मोहब्बत के सफर के साथ। लेकिन अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत।

कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक मुलाकात बनकर नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बन जाती हैं जिसे वक्त भी याद रखता है। और आज की कहानी भी एक ऐसे ही इश्क की कहानी है। फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट चल रहा है जिसका नाम है रेट्रो इश्क। तो आज की कहानी एक ऐसा इश्क जो अलग दुनियाओं के दो लोगों के बीच शुरू हुआ था। एक तरफ था इंडिया का एक यंग आर्टिस्ट और दूसरी तरफ थी स्वीडन से आई एक लड़की। जब दोनों मिले तो शायद उन्हें भी नहीं पता था कि ये छोटी सी मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। दिल्ली की गलियों में एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग के जरिए चेहरे बनाता था, लेकिन एक दिन उसने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने एक ऐसी तस्वीर बना दी जो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई। वो आर्टिस्ट थे प्रद्युमन कुमार और वो लड़की थी चार्लेट वॉन। चार्लेट स्वीडन से इंडिया आई थी और प्रद्युमन से मिली। उनकी कला ने चार्लेट का दिल जीत लिया और प्रद्युमन ने चार्लेट के अंदर छुपी हुई सिंप्लिसिटी और खूबसूरती को महसूस किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, मुलाकातें यादों में बदलने लगी, और फिर वो पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक इम्तिहान जरूर आता है, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, कभी कभी मोहब्बत को फासलों से भी गुजरना पड़ता है। शादी के बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लिया जहां चार्लेट को अपने घर अपने देश स्वीडन वापस जाना पड़ा और प्रद्युमन इंडिया में ही रह गए। सोचिए, जिस इंसान के साथ कल तक हर पल शेयर किया हो, अचानक वही इंसान हजारों किलोमीटर दूर आपसे चला जाए। ना आज की तरह वीडियो कॉल्स थी, ना इंस्टेंट मैसेजेस थे, बस थे कुछ लेटर्स, कुछ यादें और एक इंतजार। लेकिन कुछ रिश्ते दूरियों से कमजोर नहीं होते, बल्कि उन दूरियों से और ज्यादा गहरे हो जाते हैं। प्रद्युमन के दिल में एक यकीन था कि फासला चाहे जितना भी क्यों ना हो, एक दिन वो चार्लेट तक जरूर पहुंचेगा। और शायद यही होता है सच्चा इश्क, जहां दिल को सिर्फ एक चीज पता होती है कि मंजिल कहाँ है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। अब आगे की कहानी में आएगा वो सफर जिसने पूरी दुनिया को मोहब्बत का एक नया मतलब समझाया। कहानी जारी रहेगी, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम, जहां सिनेमा की दुनिया से आती है सबसे फ्रेश और इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब वीर पहाड़िया ने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और नाम है प्रेम कीटाणु, लेकिन नाम से ज्यादा मजेदार है इसका पोस्टर, क्योंकि वीर ने खुद इसे शेयर करते हुए लिखा है, ना नंबर मिले, ना जॉब, ना ही प्यार, बस टूटे हुए दिल और अच्छे दोस्त लेकर आ रही है प्रेम कीटाणु। फिल्म में वीर के साथ हैं अपार शक्ति खुराना और राकेश बेदी और इसे डायरेक्ट करेंगे अपूर्व सिंह करकी। तो प्यार मिला हो या ना मिला हो, प्रेम कीटाणु जरूर मिल गया है। तो ये था आज का सिनेमा का कैप्सूल।

एक बार फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत, जहां मैं बात करती हूं उन कहानियों की जहां मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक सफर है। तो चलिए बढ़ाते हैं आज के रेट्रो इश्क को और थोड़ा सा आगे, जहां मैं बात कर रही हूं प्रद्युमन कुमार की और चार्लेट वॉन की। एक ऐसी लव स्टोरी जहाँ दूरियां भी थी, मुश्किलें भी थी, लेकिन मोहब्बत का हौसला सबसे बड़ा था। अब तक आपने ये सुना है कैसे एक मुलाकात ने दो अलग दुनियाओं के लोगों को करीब ला दिया, कैसे उन्होंने शादी करके एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन फिर वक्त ने एक इम्तिहान लिया। चार्लेट को वापस स्वीडन जाना पड़ा और प्रद्युमन रह गए इंडिया में। लेकिन कुछ लोग इंतजार नहीं करते, वो अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का रास्ता खुद बनाते हैं और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला हिस्सा। क्योंकि प्रद्युमन के पास स्वीडन जाने के लिए प्लेन के टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज तो थी, अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन। उन्होंने अपनी पेंटिंग बेची और एक साइकिल खरीदी और निकल पड़े इंडिया से स्वीडन के सफर पर। सोचिए, आज हम फ्लाइट्स में बैठकर कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त एक इंसान सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए साइकिल लेकर हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी अनजान सड़कें और कभी वो लम्हे जहाँ शायद सिर्फ एक याद ही उनका साथी होती थी। लेकिन जब दिल में किसी खास इंसान से मिलने की वजह हो ना, तो थकान भी एक खूबसूरत एहसास बन जाती है। हर सुबह साइकिल चलाते वक्त शायद उनके सामने सिर्फ एक तस्वीर होती होगी चार्लेट की, और वही तस्वीर उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देती रही। कुछ लोग कहते हैं ना, प्यार में सिर्फ साथ चलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी किसी के लिए इतनी दूर तक चलना भी पड़ता है। मैं हूँ इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां का रेट्रो इश्क। आगे जानेंगे कि क्या प्रद्युमन अपनी इस मोहब्बत तक पहुँच पाए और क्या हुआ जब इतने लंबे इंतजार के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के सामने आए। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

Once again, welcome back. You all are listening Radio Maharani 9.6 FM. कुछ हट के शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। तो आखिरकार कई महीनों के सफर के बाद न जाने कितने शहरों, कितनी सरहदों और कितनी मुश्किलों को पार करके प्रद्युमन कुमार स्वीडन पहुंच ही गए। सोचिए, जिस चेहरे को देखने के लिए वो हर रोज साइकिल चलाते थे, जिसकी याद उनकी थकान मिटा देती थी, आज वही चेहरा उनके सामने था। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें गले मिलकर नहीं आंखों से शुरू होती हैं, और शायद उस दिन भी उन दोनों की आंखों ने वो सब कह दिया होगा जो लफ्ज कभी कह नहीं पाते। वैसे एक बात कहूँ, आजकल तो लोग लास्ट सीन देखकर रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, और उस जमाने में एक इंसान ने पूरे कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर दिया सिर्फ एक बार तुम कैसी हो सामने खड़े होकर पूछने के लिए। बस इसी को कहते हैं असली मोहब्बत। अब मैं भाई ये तो बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप भी किसी के लिए साइकिल लेकर अपने घर से निकल पड़ो, क्योंकि फरीदाबाद से गुरुग्राम या दिल्ली जाते जाते आधे लोग ये बोल देते हैं, यार बहुत दूर है। लेकिन अगर किसी के लिए दिल सच में धड़कता हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोशिश करने में कभी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि रिश्ते कन्वीनियंस से नहीं एफर्ट से चलते हैं। और प्रद्युमन और चार्लेट की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज ना हिंदी होती है, ना इंग्लिश, ना स्वीडिश। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज होती है एफर्ट्स। इसी खूबसूरत

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में है तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

वही बॉलीवुड ने सोचा कि थोड़ा सा डराया जाए और डराने के लिए लेकर आए हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान अपनी फिल्म हैवान का टीजर। आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल और आज का कैप्सूल थोड़ा सा ज्यादा सस्पिशियस है क्योंकि टीजर देखकर समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हैवान है कौन। टीजर में सैफ अली खान एक विजुअली इंस्पायर्ड कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, वही अक्षय कुमार का लुक और उनकी क्रीपी सी हंसी, भाई साहब हंसी है या वार्निंग बेल। ऊपर से मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस और इसका जो डायरेक्शन है वो काफी खास है, यानी कहानी में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और यही शायद टीजर की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। जितना दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। अब असली बात, सैफ बेचारे हैं, अक्षय खतरनाक है, कहानी में पिक्चर कुछ और ही है, इस सवाल का जवाब मिलेगा 11th of September जब हैवान थिएटर्स में आएगी। फिलहाल टीजर ने क्यूरियोसिटी तो जगा दी है और अक्षय की वो हंसी कानों में छोड़ दी है।

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्ते, मायसेल्फ डॉक्टर रजनी बेनीवाल। आई एम अ डेंटिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजिस्ट। ओवर 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आई एम अ वुमेन हेल्थ कोच एंड अ टीन पेरेंटिंग एक्सपर्ट। सो हमारी डेली डाइट में न्यूट्रिशन बैलेंस मेंटेन करना क्यों जरूरी है? न्यूट्रिशन और फूड हमारी लाइफ का बेसिक फ्यूल है। अगर हम सही अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाएंगे, सही क्वालिटी ऑफ फूड नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी का बैलेंस डेफिनेटली बिगड़ जाएगा। हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत ज़रूरत है। एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेज का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज़, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है।
0: डॉक्टर कॉलिंग।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गी। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों की रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब रखा।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है, लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे। और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जेलसी भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है, लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में हैं तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।

इस हफ्ते के सिनेमा का कैप्सूल में चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है भौकाल। यस, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर द मूवी की। अब भाई सालों तक ओटीटी पर लोगों ने मिर्जापुर को बिंज वॉच किया है, डायलॉग्स याद किए हैं, कैरेक्टर्स पर मीम्स बनाए हैं और वही पूरा यूनिवर्स पहुंच गया है बड़े पर्दे पर। और ऑनेस्टली लोगों का एक्साइटमेंट देखकर लग रहा है कि मिर्जापुर सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट है। कालीन भैया है, गुड्डू है और सबसे बड़ी बात मुन्ना भैया भी है और ये नाम ही काफी है फैंस को थिएटर तक खींचने के लिए। लेकिन इस बार कुछ नए चेहरे भी इस गेम में एंट्री मार रहे हैं। जितेंद्र कुमार यानी हमारे अपने सचिव जी और बबलू पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं। मतलब पंचायत से सीधा मिर्जापुर की गलियों तक का सफर, भाई साहब करियर ग्राफ नहीं है ये तो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। और रवि किशन की एंट्री ने भी फिल्म में एक अलग सा तड़का लगा दिया है। तो पूरे भौकाल के साथ इस बार नया मसाला भी भरपूर है। रिव्यूज की बात करें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कह रहे हैं फाइनली मिर्जापुर इज बैक, पंकज त्रिपाठी यानी हमारे कालीन भैया के प्रेजेंस को लोगों ने काफी पसंद किया है। दिव्यांदु की वापसी पर फैंस ऑलरेडी क्रेजी है और थिएटर वाला एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का बताया जा रहा है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म थोड़ी लंबी है, कहीं कहीं कहानी को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप मिर्जापुर फैन है तो ये सिर्फ मूवी नहीं, आपके लिए एक पूरा रीयूनियन है। पुराने लोग, नए खिलाड़ी, गद्दी की लड़ाई और वही फैमिलियर सा डायलॉग माहौल। सो बेसिकली भौकाल ओटीटी से उठकर थिएटर तक पहुंच गया है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं सिनेमा का कैप्सूल।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: भटक जाता है, ज्ञान भूल जाता है। भक्ति का पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: समस्त भागवत धर्मन ऊपर निकुंज माधुरी श्री युगल चंद जो विलास करत हैं, जिन यह समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे ते आपते जाई अंतर परे निसंदेह। अब यहाँ रस के उपासक को, रसोपासक को, साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि सभी से ये चर्चा करनी उचित नहीं है। देवदास जी कह रहे हैं कि जिन यह रस समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे तो आपते जाए, यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके हृदय में जो रसानुभूति है वही समाप्त हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अंतर परे निस्संदेह, और समाप्त नहीं होगी तो कह रहे शिथिल तो अवश्य पड़ जाएगी। पूर्व भी आपसे चर्चा हुई इस विषय पर, भजन को छिपाना ही भजन को बचाना है, भजन का गोपन। और अनधिकारी के सामने तो बिल्कुल भी ना कहा जाए। अच्छा, बहुत लोग मैंने ऐसे देखा वो खींच तान कर सबको लगाने का यहाँ प्रयास करते हैं, पर ऐसा संभव होता नहीं है भाई। जीव का कल्याण केवल केवल केवल ईश्वर के अनुग्रह से होता है। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, ये आपका मेरा प्रयास नहीं है, ये आप पर और मुझ पर प्रभु की कृपा है। ये प्रभु की कृपा के प्रसाद से आप और मैं यहाँ पर बैठे। ताते मौन होए रहनो बहुत भलो है। सब जगह प्रवचन उपदेश की आवश्यकता नहीं है, है ना। दुर्दास जी कह रहे आवश्यकता से भी कम बोलने वाला वस्तुतः साधक है। डोंगरे जी महाराज तो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है, आवश्यकता पड़ने पर भी आवश्यकता से कम, कहते हैं जो केवल आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता से कम बोलता है वो सदा मौन रहता है। समझिए, वो सदा मौन में ही है, वो वाणी का तप कर रहा है। ये वाणी का तप है, आपको खबर भी नहीं है आप अपनी कितनी शक्ति अनर्गल बोल कर गमाते हैं। तो फिर कहते हैं विजाति सुमिल वो भलो नाही। विजाति माने जो आपके रस के अनुकूल ना हो। अच्छा, एक और बात यहां मैं छोटी सी है पर कहना चाहूंगा, ये अच्छा है या बुरा इस वाद और विवाद में भी मत पड़िए। किसी के लिए ये घोषणा भी मत करिए कि अच्छा है या बुरा, हमारे अनुकूल नहीं है, बस इतना पर्याप्त है। अच्छे और बुरे के प्रपंच में पढ़ना भी ठीक।